0: शरीर में मन मुख्य है। मन में कुत्सित विचारों के पैदा होते ही शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। मन को उपयोगी कार्यों में लगाए रखना स्वास्थ्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। नदी की प्रवाहमान धारा की तरह हमारे काम सरल स्वाभाविक रूप से होते रहे तो स्वास्थ्य बहता हुआ आकर स्वयं हमारे चरण धोएगा। रोगी होना शरीर का स्वभाव नहीं है, रुग्णता प्रकृति नहीं विकृति है। रोगी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त शारीरिक स्वास्थ्य है। शरीर की थकान से पहले मनुष्य का मन थक जाता है। शरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मन रोगी हो जाता है। इसलिए हमें मानसिक क्लांति पर विजय पाने का उद्योग करना चाहिए। जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे आदर्श स्वास्थ्य की आशा व्यर्थ है। कुविचार मानसिक विकार है और चूंकि शरीर मन का अनुयायी है मानसिक विकार शरीर को विकृत कर देते हैं।
1: सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई ताजगी के साथ यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आपकी रेडियो साथी आरजे दुनिया आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक दी तांगजंग तथा तकनीकी अभियंता होलीराम वर्मा। आज सन 2024 की मई महीने की 27 तारीख है और दिन है बुधवार। रोजाना की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार।

मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:15 पर, 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार, 7:40

सुबह के 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर प्रसारित होंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। सुबह के 11 बजे से लेकर 11:10 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

तो दोस्तों, ये थे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी नगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as the members of the committee. The Joint Secretary for Nurse One in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to the national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. We have a report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है.
3: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL cbse.onmarks.co.in is the testing site only with the sample data for internal testing and review purposes. CBSE emphasized that no security breaches have come to light on the portal deployed for the actual evaluation work. The board stated that on-screen marking system has been implemented to enhance transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. The board also reassured the concerned that robust safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. The weather agency has also forecast heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana and Uttarakhand for the next 2 days. IMD has also predicted hot and humid weather conditions over Gangetic, West Bengal, Konkan, Goa, Odisha, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. Met Department has also predicted heavy rainfall over Bihar, interior Karnataka and the northeastern region till Sunday. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Kerala, Mahe, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rayalaseema, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana and parts of North East. Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs set by Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans were all out for 162 with 3 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
5: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत और आज इस कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे ताबा कुकू और पार्टी की आवाजों में दोंगी पोलो डिवोशनल सॉन्ग।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताबा कुकू और पार्टी के आवाजों में निशी दोनी पोलो डिवोशनल सॉन्ग। इसी के साथ ही भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम, जहां बातों का सिलसिला होता है सेहत, सुकून और एक बेहतर जीवन का। यहां हम आपको देते हैं कुछ हेल्थ टिप्स और जरूरी जानकारियां जो आपको स्वस्थ और एनर्जेटिक रखने में थोड़ी सी मदद जरूर करेगी। दोस्तों, आजकल हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सीधा चाय या कॉफी की तरह भागते हैं ताकि नींद और सुस्ती दूर हो जाए। लेकिन ज्यादा कॉफी पीने से रात की नींद भी खराब हो सकती है और शरीर और ज्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक और बेहतर तरीका है खुद को सुबह जगाने का। जी हाँ दोस्तों, सुबह की कसरत। सुबह थोड़ी देर शरीर को चलाने फिरने से ताजगी आती है, शरीर में फुर्ती बनी रहती है और पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। और सबसे अच्छी बात, वही सेहतमंद आदत सबसे बेहतर होती है जिसे हम रोज निभा सकते हैं। सुबह कसरत करने से खून का दौरा तेज होता है, नींद की सुस्ती दूर होती है और शरीर जल्दी सक्रिय हो जाता है। अध्ययन में भी ये देखा गया है कि सुबह की कसरत दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। इसके लिए मुश्किल या भारी कसरत जरूरी नहीं है, हल्की फुल्की गतिविधि भी काफी होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान मॉर्निंग एक्सरसाइजेस और उनके फायदों के बारे में। स्ट्रेचिंग से शुरुआत करिए। सुबह उठते ही हल्की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। इससे शरीर की अकड़ कम होती है और मांसपेशियां धीरे धीरे खुलने लगती है। आप गर्दन को धीरे धीरे घुमाइए, कंधों को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ऊपर खींचकर बॉडी को लंबा कीजिए और पैरों को हल्का स्ट्रेच दीजिए। सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी शरीर को हल्का और ताजा महसूस करवाती है।

टहलना या हल्की दौड़, सुबह की ताजी हवा में हल्का टहलना या धीरे धीरे दौड़ना दिल और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे खून का दौरा बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा का एहसास होता है। अगर आप नए हो तो पहले हल्का वर्क कीजिए, फिर धीरे धीरे जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स ये एक आसान और मजेदार कसरत है जो पूरे शरीर को सक्रिय कर देती है। हाथ और पैर खुलकर जंप करना हार्ट रेट को बढ़ाता है और सुस्ती को दूर करता है। सिर्फ 30 या 50 जंपिंग जैक्स भी आपको एनर्जेटिक फील करवा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बिना किसी मशीन या ज्यादा जगह की भी आसानी से किया जा सकता है।

और दोस्तों आप सुबह उठते ही योगा भी कर सकते हैं। योगा सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है। सुबह योगा करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियों में जकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। तदासन, वज्रासन और बालासन जैसे आसान शरीर को स्ट्रेच करते हैं और मन को शांति देते हैं। सांस की क्रिया के साथ योगा करने से शरीर में ऑक्सीजन का दौरा और बेहतर होता है। इससे मन शांत रहता है और दिन भर गुस्सा, तनाव और चिंता कम महसूस होती है। कई लोग सुबह योग को अपनी मी टाइम की तरह भी देखते हैं, जहां कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बिताए जा सकते हैं। दोस्तों मैं आगे आपको और भी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम का पहला गीत ब्रह्मास्त्र फिल्म से रसिया, जिसे गाया है तुषार जोशी और श्रेया घोषाल ने।

मिनट्स जहां होते हैं दिल से दिल की बात, और आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जहां बात कर रहे थे कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइजेस और उनके फायदों के बारे में। तब आगे बढ़ते हुए अगला एक्सरसाइज आप जो कर सकते हैं वो है साइकिल चलाना। साइकिल चलाना एक हल्का लेकिन बहुत असरदार व्यायाम माना जाता है। ये दिल को मजबूत बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शरीर को धीरे धीरे पूरी तरह जगाता है। सुबह कॉलोनी या पार्क के आसपास हल्की साइकिल सवारी करना सिर्फ शरीर ही नहीं मन को भी खुश कर देता है। ठंडी हवा और सुबह का शांत माहौल पूरे दिन के लिए अच्छा महसूस करवाता है। और सबसे अच्छी बात, साइकिल चलाना घुटनों पर ज्यादा जोर भी नहीं डालता। अगला एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उठक बैठक यानी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स पैरों, जंघों और कमर के नीचे वाले हिस्सों को मजबूत बनाते हैं। इसके लिए पैरों को कंधों के बराबर रखिए और धीरे धीरे नीचे बैठकर फिर सीधा खड़े हो जाइए। शुरुआत में आप 10 या 15 स्क्वाट्स कर सकते हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। ये कसरत शरीर का संतुलन सुधारने में भी मदद करती है और पैरों में ताकत बढ़ाती है।

दोस्तों, सुबह की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और कसरत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे शरीर में फुर्ती बनी रहती है, मन खुश रहता है और दिन भर काम करने में भी मजा आता है। तो अगर इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी स्ट्रेचिंग से शुरू किया जाए। और कल सुबह अलार्म बंद करके दोबारा मत सो जाइए, उठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेस कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए और अपने दिन की एक सेहतमंद, ताज़ी भरी और खुशनुमा शुरुआत कीजिए।

Entonces tú vas a chiquillos. आज की स्वस्थ जीवन शैली की बातचीत में इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत क्रिस फिल्म से कोई तुम सन है, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में।

कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी नगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार।

अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। दोस्तों बता दूं, अगर आप आपातानी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपको बताएंगे आज की यानी 27 मई की हिस्टोरिकल इवेंट्स और साथ ही राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां।

दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन। भारत तथा विश्व इतिहास में 27 मई की

अपने ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 27 मई की ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। 27 मई 1703 की स्थापना 1703 को रशिया के शासक पीटर द ग्रेट ने की थी। इस शहर को रशिया का विंडो टू यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप और रशिया के बीच कल्चरल और ट्रेड कनेक्शन का बड़ा केंद्र बना। कुछ समय तक यही रशिया की राजधानी भी रही। 1999 में कारगिल वार के दौरान 27 मई का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। इसी दौरान भारतीय सेना और वायुसेना ने दुश्मनों के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को तेज किया। देश की सुरक्षा के लिए कई जवानों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये युद्ध भारत के साहस और सेना की वीरता का प्रतीक माना जाता है। रिचर्ड ड्रू ने 27 मई 1930 को ट्रांसपेरेंट स्कॉच टेप इंट्रोड्यूस किया। आज ये टेप दुनिया भर में पैकेजिंग और रिपेयरिंग के लिए यूज होता है। 14 इन्वेंशन होने के बावजूद इसका डेली लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। बराक ओबामा 27 मई 2016 को हिरोशिमा गए और एटॉमिक बॉम्ब मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। वो हिरोशिमा विजिट करने वाले पहले सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। इस विजिट को शांति और न्यूक्लियर वॉर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के रूप में देखा गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को निधन हो गए। उन्हें मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स में से एक माना जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान नेहरू जी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ कई आंदोलनों में भाग लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। आजादी की लड़ाई के दौरान कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1947 में भारत की आजादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नए भारत को साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और डेमोक्रेटिक डायरेक्शन देने में बड़ा योगदान दिया। आईआईटी, डैम्स और बड़े इंडस्ट्रीज की स्थापना उनके सपना का हिस्सा भी रहा। बच्चों के प्रति उनके प्यार की वजह से उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है और इसीलिए हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा संगीत अंतराल, उसके तुरंत बाद हम नजर डालेंगे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर।

दोस्तों आप बने हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल के बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं राजधानी टनगर से प्रकाशित समाचार पत्रों के सुर्खियों पर। दी अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से, पीएम मोदी रिमेम्बर्स जवाहरलाल नेहरू ऑन डेथ एनिवर्सरी। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने नेहरू जी के राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र और वैज्ञानिक सोच को मजबूत करने में दिए गए योगदान को याद किया। हैवी रेन अलर्ट इशूड फॉर अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और सड़क अवरुद्ध होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगली हेडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट रिव्यूज मॉनसून प्रिपेयरनेस। राज्य सरकार ने मॉनसून को देखते हुए तैयारियों का समीक्षा किया। बैठक में डिजास्टर मैनेजमेंट, सड़क कनेक्टिविटी और इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर विभिन्न विभागों ने विभागों के अधिकारियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। अवेयरनेस ड्राइव अगेंस्ट ड्रग अब्यूज कंटिन्यूज। राज्य के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में नशा मुक्त जागरूकता अभियान जारी है। युवाओं को नशा के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया और स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित की गई। अगली हेडलाइन है, मेडिकल आउटरीच कैंप्स हेल्ड इन रिमोट एरियाज। दूर दराज के कई गाँव में स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा बलों के सहयोग से मेडिकल आउटरीच कैंप लगाए गए। लोगों को मुफ्त जांच, दवा और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधाएं दी गई। अगली हेडलाइन है, स्टूडेंट्स शाइन इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। अरुणाचल प्रदेश के कई विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। स्कूल और अभिभावकों ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अगली हेडलाइन है, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स गेन मोमेंटम। राज्य में चल रही सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम तेज हो गई है। सरकार का उद्देश्य दूरदराज इलाकों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और यात्रा को आसान बनाना है। अगली हेडलाइन है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स ओवर ग्लेशियर मेल्टिंग डिस्कस। अरुणाचल के ग्लेशियर और पर्यावरण पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। विशेषज्ञों ने कहा कि ग्लेशियर पिघलने की घटनाओं पर नजर रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना बहुत जरूरी है।

राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों से आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम का अगला गीत। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से कश्मीर में तो कन्याकुमारी, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में।

इसी के साथ ही दोस्तों मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में यानी 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताक इन श्रोताओं का समाचार। ताक इन श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी जयनगर का मित्र मुहित 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा TRM 666 किलोहर्ट्ज पर। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से डर की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

स्टूडियो हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए ऐसे ये खूबसूरत सदाबहार गाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना आप सुन पाएंगे आ गले लग जाओ फिल्म से तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, किशोर कुमार की आवाज में।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज।

0: अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों सदाबहार कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन पाएंगे सतमा फिल्म से ए जिंदगी गले लगा ले सुरेश वाडकर की आवाज में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पल में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: मगर
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का

0: सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वही आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन

0: मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद

0: और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन वन ईयर। इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 मंथ्स। विद अनुपम मिश्रा, दिस इज विष्णु पीएस, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
2: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950 and the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories. The poll body had initially identified 11 documents for verification purposes. However, the apex court later directed the inclusion of Aadhaar as an additional document for the SIR process. Most of the petitions were filed in June last year after the ECI decided to conduct an SIR in Bihar. The exercise was subsequently extended to multiple states and UTs, including West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. The poll body defended the exercise before the apex court, contending that the revision was aimed at ensuring the purity of electoral rules and preventing duplication or inclusion of ineligible voters. After hearing the parties, the CJI Surya Kant-led bench reserved its verdict on Jan 29th. Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL http://cbse.onmarks.co.in is the testing site only with sample data for internal testing and review purposes. More from our correspondent.
1: The Central Board of Secondary Education stated that the URL circulating on social media is different from the portal used for the evaluation of answer books. It noted that the system has been implemented for enhanced transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. Refuting claims of any security breach on its actual on-screen marking system, CBSE reassured all concerned that safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. President Draupadi Murmu will visit Nathula Pass in Sikkim this morning on the second day of her visit to the state. The president will interact with soldiers stationed at Nathula, where senior army officers will brief her on various activities in the area. She will also visit the Baba Harbhajan Shrine. Later in the day, President Murmu will award degrees and medals to students during convocation ceremony of Sikkim University at Manan Kendra in Gangtok. Nearly 14,000 degrees across 33 departments will be awarded, along with 285 gold and silver medals to meritorious students, which include 199 women. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. The weather agency has also forecast heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, coastal Andhra

0: दोस्तों, सभा के इस भाग में लीजिए प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, गब्बर इस बैग फिल्म से तेरी मेरी कहानी अरिजीत सिंह और पलक मुचाल की आवाजों में।

दोस्तों, अरुण FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, आइए आज इस कार्यक्रम के तहत बात करते हैं उपवास या फास्टिंग करने के फायदे पर।

दोस्तों, अगर हमारा जीवन केवल स्वाद इच्छाओं और चटपटे स्वादों में उलझा हो तो शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। ऐसे में जरूरत होती है थोड़े विराम की, थोड़े संयम की, और यही से शुरू होती है उपवास की सरल लेकिन प्रभावशाली यात्रा। भारतीय संस्कृति में उपवास केवल भोजन से जुड़े नहीं बल्कि एक गहरी साधना है। ये आत्मनियंत्रण, श्रद्धा और स्वस्थ तीनों का अद्भुत संगम है। जब हम उपवास करते हैं तो ये शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया बन जाती है। शारीरिक रूप से देखें तो उपवास हमारे पाचन तंत्र को विराम देता है। जब शरीर को कुछ घंटों या एक दिन के लिए ठोस भोजन से राहत मिलती है तो वो अपनी ऊर्जा खाने को पचाने में नहीं बल्कि अंदर की मरम्मत में लग जाते हैं। ये प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया है जिसमें शरीर खुद ही जमे हुए टॉक्सिन्स बाहर निकल देते हैं और नतीजा ज्यादा ताजगी, हल्कापन, ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य।

आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपवास ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल की बीमारियों से बचाव करता है और वजन घटाने में सहयोग होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे विधियां आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है, जिससे जो कभी हमारे परंपराओं का हिस्सा हुआ करता था। उपवास का सबसे सुंदर पक्ष है उसका मानसिक और आत्मिक प्रभाव। जब हम उपवास करते हैं तो हम लालच, तृष्णा और आदतों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। ये संयम का अभ्यास है जिसमें मन इधर उधर भटकने के बजाय भीतर की ओर मुड़ता है। उपवास हमें एहसास कराता है कि जीवन में हर चीज का मूल्य है, भोजन का भी, जल का भी और आत्म विकास का भी। ये सिर्फ पेट से नहीं, मन और आत्मा से भी भूख को पचाने की प्रक्रिया बन जाती है।

0: दोस्तों लौटें के एक और खूबसूरत गीत के साथ इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोक

दोस्तों, हेलो तनगर कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, सुनो ना अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। इसी के साथ ही हेलो तनगर कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता होगी 1200 किलोवाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे और राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 52 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी।
2: The news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Supreme Court will today pronounce its judgment on the batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India CJI Suryakant and Justice Joy Malia Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenge the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and the rules framed thereunder. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal co-chaired the Canada-India Investment Roundtable alongside his Canadian counterpart Maninder Sidhu. Mr. Goyal said he held extensive discussions with Canada's leading pension funds, sovereign and institutional investors, members of the Canada-India Business Council and other stakeholders. The minister highlighted in a social media post the Indian government's focus on infrastructure, financial sector reforms, and ease of doing business is creating unprecedented opportunities for the global investors. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today paid tributes to the victims of the Air India Flight 182 bombing at the Kanishka Memorial at Humber Bay Park, Canada. In a social media post, Mr. Goyal said the mid-air bombing remains one of the most tragic acts of terrorism in aviation history. Prime Minister Narendra Modi has paid homage to former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on his death anniversary. Russian embassy in South Africa has said scientists in Russia have developed a new vaccine against the latest strain of Ebola virus. Russian Health Minister Mikhail Murashko announced the development. Scientists said the vaccine may also work against the rare Bundibogyo strain linked to recent outbreaks.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप अब सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म गपशप, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सिनेमा की दुनिया की ताजा तरीन खबरें, नए रिलीज फिल्मों के अपडेट्स, ओटीटी अपडेट्स और साथ ही पेश करेंगे चंद खूबसूरत नगमे।

चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम। और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त के यंग ऑडियंस के फेवरेट रोमांटिक ड्रामा फिल्म चांद मेरा दिल की, जो रिलीज के बाद सोशल मीडिया और बॉक्स ऑफिस दोनों जगह डिस्कशन में बनी हुई है। फिल्म 22 मई थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसमें फ्रेश पेयरिंग देखने को मिल रही है अनन्या पांडे और लक्ष्य की। डायरेक्शन संभाला है विवेक सोनी ने, जबकि फिल्म धारमार प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ओपनिंग थोड़ा स्लो रहा, लेकिन वीकेंड में कलेक्शन में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली। देवपोर तक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 18 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें तो फिल्म को मिक्स्ड बट डिसेंट रिव्यूज मिल रही है। कई व्यूवर्स को फिल्म की इमोशनल लव स्टोरी, सोलफुल म्यूजिक और अनन्या लक्ष्य की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। क्रिटिक्स ने स्पेशली फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स और म्यूजिक को हाईलाइट किया है, ऑल्दो कुछ लोगों को सेकेंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगा। सोशल मीडिया पर फिल्म का एक भारतनाट्यम इंस्पायर्ड सीक्वेंस भी काफी वायरल हो गई है। कुछ यूजर्स ने उस सीन को ट्रोल किया तो कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिव फ्यूजन बताया। अब रिसेंटली एक बीटीएस

सामने आया है, जिसके बाद ऑनलाइन रिएक्शंस और डिस्कशंस और भी बढ़ गया है। ओवरऑल देखा जाए तो चांद मेरा दिल यूथ ऑडियंस के बीच अपनी सॉफ्ट रोमांटिक वाइब, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और म्यूजिकल फील की वजह से ग्रेजुअली कनेक्ट करती नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मॉडर्न रोमांस और हार्ट फेल्ट लव स्टोरीज पसंद है तो ये फिल्म आप देखने जरूर जा सकते हैं। दोस्तों, आज ये और भी फिल्मों के बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्मी गपशप कार्यक्रम का पहला गीत। पुकार फिल्म से के सरा सरा शंकर महादेवन, कबीर कृष्णमूर्ति की आवाज में।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। फिल्मी गपशप में आप बात करते हैं अपकमिंग मूवीज की, और सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग बॉलीवुड रोम कॉम है जवानी तो इश्क होना है, जो अपने फन फिल्ड वाइब और क्लासिक कॉमेडी स्टाइल की वजह से काफी बज क्रिएट करी है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड धवन, जो बॉलीवुड के आइकॉनिक कॉमेडी डायरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं, और इस बार वो एक बार फिर अपने बेटे वरुण धवन के साथ कमबैक कर रही है। फिल्म में वरुण धवन के साथ नजर आएंगे मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े। सपोर्टिंग कास्ट में मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे और मोनी रॉय भी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिखाई देने वाली है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। पहले रिलीज डेट अलग थी, लेकिन मेकर्स ने बाद में इसे रिशेड्यूल किया। फिल्म की स्टोरी फुल ऑन कॉमेडी, कंफ्यूजन और रिलेशनशिप ड्रामा से भरी बताई जा रही है। ट्रेलर और टीजर को देखकर ऑडियंस को क्लासिक डेविड धवन एंटरटेनर्स जैसे पार्टनर्स, मुझसे शादी करोगे, मैं तेरा हीरो फिल्म की याद आ गई। सोशल मीडिया पर स्पेशली वरुण धवन के कॉमिक टाइमिंग और क्योटिक सीन्स को लेकर काफी मीम्स और डिस्कशंस चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के रिलीज को सेलिब्रेट करने के लिए डेविड धवन फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें उनकी कई क्लासिक कॉमेडी फिल्म थिएटर्स में री रिलीज होने वाली है।

तो सब बात करते हैं एक यूनिक और फैमिली एंटरटेनर फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन की, जो अपने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से काफी बज क्रिएट करी है। फिल्म में लीड रोल्स में नजर आएंगे जैकी श्रॉफ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में वो एक सुपर हीरो ग्रैंड फादर का रोल प्ले करने जा रहे हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है मनीष साइनी ने। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 29 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म की स्टोरी एक यंग बॉय और उसके ग्रैंडफादर के अराउंड घूमती है। बच्चा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसके दादाजी सीक्रेटली एक सुपर हीरो है। लेकिन सिचुएशन और इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब एलियंस की एंट्री होती है और दुनिया को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी

रियलिटी सुपर हीरो दादा पर आ जाती है। मूवी में इमेजिनेशन, कॉमेडी, स्काईफाई एडवेंचर और इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग का कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ट्रेलर और टीजर को सोशल मीडिया पर काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। कई व्यूवर्स को फिल्म की वाइब ऑल स्कूल चिल्ड्रन फैंटेसी मूवीज की याद दिला गई। फिल्म में प्रतीक बाबर, शरद सक्सेना और भाग्यश्री दसानी भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आने वाली है। और रिसेंटली फिल्म का गाना सुपर हीरो दादा भी रिलीज हुआ है, जिसमें जैकी श्रॉफ का फन और एनर्जेटिक अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रही है।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल के बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आइए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज पर। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच विवाद अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन चुका है। सुपरस्टार को फरहान खान के प्रदर्शन हाउस एक्लेस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने जा रही फिल्म डॉन 3 चोरना भारी पड़ती दिख रहा है। प्रोड्यूसर्स ने रणबीर पर आरोप लगाया है कि अचानक फिल्म चोरने से उन्हें करोड़ों का नुकसान भुगतना पड़ा। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सुपरस्टार से भारी भरकम जुर्माने की मांग की है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। अभिनेता रमाकांत डायमा का निधन हो गया है। उनके अचानक दुनिया छोड़ जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन की जानकारी एक्ट्रेस शुभांगी लटकार ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने रमाकांत डायमा के साथ बिताए खास पलों का एक वीडियो शेयर करते हुए भावुक पोस्ट लिखी, जिसे पढ़कर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं। शुभांगी लटकार ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज उन्होंने सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत इंसान को खो दिया है। एक्ट्रेस ने लिखी, वो लाइफ को खुलकर जीने वाले इंसान थे जो हर मुश्किल स्थिति में मुस्कुराना जानते थे और उस मुसीबत से खुद को निकल भी लेते थे। वे शानदार अभिनेता होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर और सिंगर भी थे। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को सिनेमा में उनके योगदान के लिए पोस्टमसली पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने इस अवार्ड को स्वीकार किया। उनके साथ बेटी आहना देओल भी नजर आई। अब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने एक खास पोस्ट किया है। ईशा ने इंस्टाग्राम पर माँ हेमा की अवार्ड सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा, गर्व का ये पल ढेर सारे इमोशंस भी लेकर आए हैं। हम कितना सोचते हैं कि काश इस वक्त वो यहाँ होते। एक वाइट शर्ट और ब्लू सूट में हमेशा की तरह हैंडसम लगते हुए एक छोटे बच्चे की तरह चहक रहे होते जब उन्हें ये अवार्ड मिलता। अब जब मेरी माँ ने इस अवार्ड को रिसीव किया है और हम सभी में से सबसे छोटी बहन आहना वहाँ मौजूद थी, उसके आंसू ने हमें सबके दिल की फीलिंग्स दिखाई। एक ऐसे इंसान जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और मिस करते हैं और गर्व के साथ पापा कहते हैं, आप हमेशा हमारे दिलों में हो।

इंडियन आइडल के आने वाले एपिसोड में दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख नजर आने वाली है। इस एपिसोड में उन्होंने राजेश खन्ना की बेमिसाल स्टारडम से जुड़ी दिलचस्प यादें साझा की। एक बातचीत के दौरान हर्ष निम्बचा ने आशा पारेख से पूछा, पहला सवाल है कि मैम आपकी पहली बार कब आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार बनेंगे। आशा पारेख ने गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा, उनकी पिक्चर एकदम से हिट हो गई और सब लड़कियां दीवानी हो गई थी, तब लगा कि ये सुपरस्टार बन गए हैं।

इसके लिए मैं कहूंगी कि राजेश खन्ना के पीछे जो क्रेज था लड़कियों का, जो पागलपन था, वो मैंने सिर्फ एक और हीरो के लिए देखा और वो थे देव आनंद। उनके लिए भी लड़कियां बेहोश हो जाती थी। इसी तरह राजेश खन्ना जी के लिए भी सुना है कि लोग उनकी गाड़ी को किस करते थे और कुछ तो उनके फोटो के साथ ही शादी करते थे।

दस्तायेब फिल्म में गपसप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं वो गाना जिसने बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, पेश है तेजाब फिल्म का एक दो तीन गाना।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

इसी के साथ ही दोस्तों फिल्म गप सप कार्यक्रम का ये अंक ही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। हम लौटेंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ 10:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों, सुबह के 10:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में, जहां हम आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स आप तक और आपके अपने तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आपसे लेकर पूरे 50 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ आप सबके पसंदीदा गीत प्ले किए जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम। और आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है लंगसम के आंगलोंग से टेंसन क्रो और उनके परिवार ने। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है वास्तव फिल्म का मेरी दुनिया है कुछ भी नहीं, जिसे गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने। तो आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

चलिए दोस्तों, रीडन डिमांड पर अगली रिक्वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हमें आया है रोमेश पात्र, रोनू पात्र और लक्की जी का, जो कि रहने वाले हैं गोलाघाट आसाम का, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है इम्तिहान फिल्म का रुक जाना नहीं, और साथ ही वो इस गाने को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने कुछ दोस्तों को, अमल बसुमतारी, बिमोल बसुमतारी, बाइको मुंडा, जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंतिपी और अंजलि बसुमतारी को। दोस्तों बता दूं, रुक जाना नहीं बहुत ही खूबसूरत गीत, इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
1: दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर, जो हमें आया है कार्बी आंगलोंग से, गिरिन तेरोन और पांगचो आरंग जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है दिलवाले फिल्म का कितना हसीन चेहरा सुकुमार सानू की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए सुनते हैं आपका पसंद का गीत।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर अगली फरमाइश आइए हमें सरिहा जान कार्बी आंगलोंग आसाम से जोगिंद्र रोंगपी धर्मक्री रोंगपी और सोनाली इंतीपी जी का उन्हें सुनना है पकीजा फिल्म का चलते चलते जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और साथ ही ये गाना वो अपने कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। उनके दोस्तों के नाम हैं अमोल बसुमतारी पाइको मुंडा रमेश पात्रो रुनु पात्रो और सभी अरुणाचल प्रदेश के श्रोतागणों को डेडिकेट किया है। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी रिक्वेस्ट हमें रोज भेजने के लिए। ऐसे ही आप सभी हमारे साथ बने रहिए और अपने पसंदीदा गीतों को अरुण FM पर सुनते रहिए। तो चलिए आपके फरमाइश पर पेश है चलते चलते लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

दूसरे दिन डिमांड पर अगला गाना आप सुन पाएंगे बंटी और बबली फिल्म का कजरा रे, जिसे गाया है अलीशा चिन्नई, शंकर महादेवन और जावेद अली ने। और इस गीत की फरमाइश हमें आई है नाहरलगन से देव जी का। तो देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश है आपका पसंदीदा गीत।

0: madam. I am your only Adam.
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप भी अपना पसंदीदा गीत अरुण FM 103.1 MHz पर और रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेजेस के जरिए अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दोस्तों, हमारा नंबर है 9436887808। जहाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9436887808। हमें आप सबका मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं रेडियो डिमांड की अगली रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है निर्जली डी सेक्टर से दोलुम जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का परदेसी गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

जहाँ दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का RUN FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों इसी के साथ ही हम आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम रिक्वेस्ट पर आप पहुँचिए। हम कल फिर हाजिर होंगे आप सबके पसंदीदा गीतों के साथ 10:10 पर रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के साथ। तो चलिए आज के अंतिम रिक्वेस्ट लेते हैं, जो हमें आया है नाहरलगन से अंजू जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है हमें दिल फिल्म का हमने कर छोड़ा है। इस गीत को गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अजमेर में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक तीतांग जंग तथा तकनीकी अभियंता होलीराम वर्मा। और साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में, जो आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी आरजे नूरी। तो अब मुझे यानी आपकी रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाल इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Center has said that no case of Ebola virus disease has been reported in the country so far. Union Health Ministry said it is closely monitoring the evolving Ebola situation following recent outbreaks reported in parts of Africa. Sources said an individual with recent travel history from Uganda who reported mild symptoms of body ache was isolated at the state-run Epidemic Diseases Hospital in Bengaluru for observation and medical evaluation. A sample was collected and sent to the National Institute of Virology for laboratory testing. The test result has returned negative for Ebola virus disease. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in the NEET UG 2026 examination paper leak. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 question leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrest accused Manisha Havaldar. The Indian Air Force has announced a new scheme for recruitment to its technical branch in the officers' cadre through GATE scores. The Ministry of Defence said candidates with a valid graduate aptitude test in engineering or GATE score will be directly shortlisted for testing at the Air Force selection boards. Under the scheme, eligible candidates will have to appear for the preliminary written examination, including the Air Force Common Admission Test, or AFE-CAT. Selection will be based on merit. Prime Minister Narendra Modi today underlined that even the biggest goals can be achieved through continuous effort, patience and firm determination. Sharing a Sanskrit Subhashitam on his social media account, Mr. Modi said that the people of the country are guided by this very spirit as they take India to new heights. The Subhashitam conveys that a person who aspires to achieve a goal and makes continuous and systematic efforts towards it will certainly attain it, provided they do not give up midway and retreat from their path. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today interacted with the Indian diaspora of Canada at the community reception hosted by the Consulate General of India in Toronto. In a social media post, Mr. Goyal said that during the interaction, he highlighted India's remarkable economic transformation under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The India Met Department has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator match this evening at New Chandigarh, Mohali. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final, which will be played on the 31st of this month at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And that is the end of this bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज
2: तेरे दिल का मेरे दिल से।
3: जी हाँ दोस्तों, दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, और ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, अरुणाचल की अपनी आवाज, और मैं हूँ आप सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी। श्रोता दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, और रेडियो की दुनिया में हर नई प्रसारण सभा दिलों को जोड़ने का एक नया सफर बन जाती है। नमस्कार ईटानगर, सुप्रभात, और आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज की दूसरी प्रसारण सभा में। दोस्तों, मैं आरजे नूरी, और अब मैं संभाल रही हूँ प्रथम प्रसारण सभा की खूबसूरत प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए, यानी आरजे दुनिया के साथ का सफर आप सभी ने बहुत ही एंजॉय किया, तो मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ भी ये सफर सुहाना होने वाला है, यही वादे के साथ मैं यहाँ पहुंची हूँ। और दोस्तों, इन कार्यक्रमों को और इस सभा को और भी खूबसूरत और जानदार बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में प्रसारण अधिकारी पी डोले तथा तकनीकी अभियंता एके सक्सेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर फिल्मी लहर के साथ।

श्रोता दोस्तों, मेरे साथ यानी आरजे नरे के साथ आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। दोस्तों, अक्सर हम फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो चुपचाप समाज का आईना बन जाती है। और आज हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जहां महिलाओं ने सिर्फ अपने सपनों को नहीं पहचाना, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर अपनी नई पहचान बनाई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म गाइड की, और इस फिल्म में वहीदा रहमान द्वारा निभाए गए यादगार किरदार रोजी की। दोस्तों, उस दौर में जब महिलाओं के सपनों को अक्सर घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया जाता था, तब रोजी का किरदार बहुत साहसिक और प्रेरणादायक माना गया। एक ऐसी महिला जो अपने भीतर की कलाकार को दबाकर जी रही थी, जिसकी प्रतिभा को समझने के बजाय उसे सिर्फ परंपराओं में बांध कर रखा गया, लेकिन फिर वो अपने हुनर, अपने नृत्य और अपनी पहचान को अपनाने का फैसला करती है। दोस्तों, रोजी सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं थी, बल्कि उन काउंटलेस महिलाओं की आवाज थी जो अपने सपनों को जीना चाहती थी, लेकिन समाज के डर से चुप रह जाती थी। उस समय में एक महिला का अपने पेड़ों पर खड़ा होना और अपना करियर चुनना और अपनी पहचान बनाना बहुत बड़ी बात थी, और शायद यही वजह है कि आज भी गाइड सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की एक मजबूत मिसाल बन जाती है, और इसे हम सचमुच में गाइड समझते हैं। फिल्म केवल नाम के लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म में जो एसेंस है उसे हमें गाइडेंस मिलती है। आत्मसम्मान की एक मजबूत मिसाल हमें मिलती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल सफर दूसरों की उम्मीदों से निकलकर खुद की पहचान तक पहुंचने का होता है। श्रोता दोस्तों, इस वक्त जो भी मेरे साथ जुड़े हुए यानी 8 जनवरी के साथ जुड़े हुए आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर, तो आप सुन रहे हैं मेरे साथ फिल्मी लहर। दोस्तों, फिल्मों को केवल मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि लाइफ लेसन्स के जरिए से अगर देखें तो हमें बहुत कुछ मिलता है। मनोरंजन के साथ साथ जीवन की सीख मिलती है। चलिए बढ़ते हैं एक और सीख यानी कि एक और गीत की तरफ।

बादल पे पांव है। फिल्म चक दे इंडिया का ये गीत केवल एक गीत ही नहीं है बल्कि उन सपनों की उड़ान है जो आत्मविश्वास और हिम्मत से पूरी होती है। दोस्तों, जब एक महिला अपने पेड़ों पर खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई राह बना देती है। और शायद यही वजह है कि आर्थिक निर्भरता यानी कि आत्मनिर्भरता सिर्फ कमाई का विषय नहीं बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और अपनी पहचान की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। इसलिए महिलाओं, आप एक किताब मैं आपको जरूर बोलूंगी कि नेशनल फाइनेंशियल ओलंपियड का जो किताब है ना, लेडीज लेट्स टॉक मनी, जरूर पढ़ना। कभी कभार हम यही सोचते हैं ना कि आत्मविश्वास बन जाना ही काफी है, पैसे कमा लेना ही काफी है, लेकिन इस गिल्ट के साथ हमने जो खुद पैसा कमाया है वो कभी कभार हम अपने आप पर खर्चा करने से गिल्ट से भर जाते हैं और कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि मेरे परिवार पहले, मैं बाद में, और हम अपने आप को कहीं पीछे धकेल देते हैं। और जिंदगी में जब हम उम्र के उस दलान पर पहुंच जाते हैं तो पछतावे के अलावा कुछ हमारे हाथ नहीं लगता। तो लेडीज, ग्यारह अपने लिए जरूर जिए। जब खुद अपने लिए जिएंगे तो अपने अपनों के लिए आप जरूर जिंदगी बेहतर बनाएंगी। तो फिल्मी लहर में चलिए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत, और हम इस गीत से क्या लेसन लेते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि फिल्में केवल मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि लाइफ लेसन का भी जरिया है। तो चलिए, फिल्मी लहर का अगला गीत कौन सा लेसन हमें सिखा जाता है, सुनते हैं।

गीत को सुनकर आप भी खुशियों से भर गए होंगे और एनर्जी से भरपूर हो गए होंगे। दोस्तों, फिल्म हाईवे का ये गीत सिर्फ सफर की आजादी नहीं बल्कि खुद को खोजने की आजादी का एहसास भी कराता है। इस फिल्म में आलिया भट्ट यानी वीरा का किरदार हमें यह महसूस कराता है कि कई बार चमकती हुई जिंदगी के पीछे भी एक लड़की अपने मन की आजादी तलाश रही होती है। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी कई लड़कियां अपनी पसंद, अपने सपने और अपनी आवाज को खुलकर जी नहीं पाती है। कभी परिवार का दबाव, कभी समाज की सोच, तो कभी लोग क्या कहेंगे का डर। लेकिन जब एक महिला अपने फैसले खुद लेना शुरू करती है, आत्मनिर्भर बनती है और अपनी पहचान को अपनाती है, तभी उसकी असल उड़ान शुरू होती है। हम सुन रहे हैं फिल्मी लहर। फिल्मों को हम केवल मनोरंजन के नजर से नहीं बल्कि लाइफ लेसन के नजर से भी देख सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ अगर जिंदगी में हमें कुछ सीख मिले तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, यानी कि लर्निंग व्हाइल हैविंग फन। यही तो है हमारा मकसद फिल्मी लहर का। दोस्तों, फिल्मी लहर का लीजिए ये आखिरी गीत मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। सुने अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और दोस्तों, बता दूं कि फिल्मी लहर के बाद आपको मिल चलूंगी आकाशवाणी के ईटानगर द्वारा प्रस्तुत अगला कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। तो बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराए नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court said that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused, P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes, stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life. Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementaries between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaboration. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by the Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both ministers. The theme of International Day of Yoga 2026 to be observed on 21st of next month will be Yoga for Healthy Aging. Union Minister of State for Ayush, Independent Charge, Mr. Pratap Rao Jadhav said this while attending the Yoga Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 in Khajuraho today. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. Benchmark domestic equity indices were trading with marginal gains in forenoon trade today. The Sensex rose by 69 points to 76,079 and the Nifty 50 was up by 27 points to 23,941 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, अरुण FM 103.1 MHz हम सब के खास, क्योंकि करते हैं दिल से दिल की बात। और आज मैं हूँ स्टूडियोज में आप सबसे करने को दिल से दिल की बात अरुण FM 103.1 MHz के स्टूडियोज में आरजे नूरी। दोस्तों, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कानों से देखना सिखाती है। हम भले आपके चेहरे न देख सके, ना आप मेरा, लेकिन तार जुड़ी है दिल से, और दिल से जुड़े तार कभी गलत नहीं हो सकते। और इसी दावे के साथ मैं हूँ हाजिर आप सबके साथ सुनने को गाने नॉन फिल्मी। दोस्तों, फिल्मी गानों और गीतों की तो अपनी ही अलग दुनिया होती है, और लेकिन कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं होते, फिर भी सीधे दिल से जुड़ जाते हैं। और कई ऐसे गाने हैं मेरे लिस्ट में आज, लेकिन छोटे से वक्त में जिस सेगमेंट को आप सबके साथ शेयर करना है, यानी कि नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स अरुण FM 103.1 MHz पर 12:10 से लेकर 12:30 तक, इतने सारे गानों में से कौन कौन से गाने मैं आपके लिए चुनकर लेकर आई हूँ, लीजिए मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। दोस्तों, क्योंकि उनमें होता है, यानी कि नॉन फिल्मी गानों में होता है सच्चा एहसास का, खलीस संगीत और जिंदगी की छोटी बड़ी भावनाओं का खूबसूरत रंग। आज की इस खास संगीत सफर में हम लेकर आए कुछ ऐसे ही बेहतरीन नॉन फिल्मी हिंदी सॉन्ग्स, जो कभी सुकून बनकर तो कभी याद बनकर तो कभी मुस्कान बनकर हमारे दिलों में बस जाते हैं। और ये कई जनरेशन से चले आए हैं कि हिंदी फिल्मी गानों के साथ साथ साइमल्टेनियसली कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट म्यूजिक मेकर्स हैं जो हमारे दिलों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और सच में पहुंच भी जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सोनू निगम की आवाज में उनके एल्बम मौसम के इस धमाकेदार गीत के साथ, बिजुरिया गीत के साथ।

ये बात तो तय है कि जब हम संगीत की बात करते हैं तो अक्सर हमारी जुबान पर सबसे पहले फिल्मी गाने ही आते हैं, और हम हिंदुस्तानियों के लिए तो हिंदी फिल्मी गाने ही गाने हैं। लेकिन संगीत की दुनिया यही तक सीमित नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाहर भी एक बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध, बहुत ही बेहद समृद्ध, रिच दुनिया है, जिसमें हम जिसे हम कहते हैं नॉन फिल्मी हिंदी सॉन्ग्स। दोस्तों, ये वो गीत है जो किसी फिल्म की कहानी में नहीं बंधे होते, ना ही किसी पर्दे पर किसी किरदार के साथ दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सीधे हमारे दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, और जगह बनाया है। और 1990s के कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स तो आज भी हमारी जुबान पर है। बहुत सारे गीतों को तो रिक्रिएट करके लोगों ने नई जनरेशन के लिए बनाया है, और वैसे ही बिजुरिया सॉन्ग का भी है। और इस गीत को जो ओरिजिनल सॉन्ग है, इस गीत के कमेंट सेक्शन देखिए तो वहां पे लिखा है कई सारे हमारे श्रोता दोस्तों ने कि कौन कौन इशिता और सोनू निगम सर का रील्स देखकर यहाँ देखने आए, यानी कि नई जनरेशन के बच्चों को जो जब मिला ये नया रिक्रिएटेड वर्जन तो ओरिजिनल सॉन्ग सुनने के लिए आ गए। तो ऐसे कई सारे हजार से ज्यादा कमेंट्स है इस गीत पर। इसका मतलब है कि हिंदी फिल्मी गाना तक ही सीमित नहीं है हमारे हिंदुस्तानी संगीत का ये जो दुनिया है। दोस्तों, इन गीतों की खासियत यही होती है कि ये ज्यादा डिजाइन नहीं किए जाते हैं, बल्कि सादा, बहुत ही महसूस किए जाने के लिए बनाए गए वो गीत होते हैं। कभी ये कविताओं से जन्म लेते हैं, तो कभी किसी गजल की नजाकत से, तो

कभी किसी कलाकार के निजी अनुभव से। और यही वजह है कि इनमें एक अलग की तरह की सादगी, गहराई और आत्मीयता होती है। चलिए नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के सेक्शन में एक और गीत हो जाए।

0: दोस्तों, नॉन फिल्मी संगीत हमें ये भी याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि यह एक अभिव्यक्ति है, यानी कि एक्सप्रेशन है, जहां शब्द भी बोलते हैं और खामोशी भी गाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि गजलें, भजन, सूफी संगीत, इंडी पॉप या कविताओं पर आधारित गीत, ये सभी नॉन फिल्मी संगीत की ही अलग अलग शैलियां हैं। और खास बात यह है कि ये गीत किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, बल्कि समय के साथ साथ और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही खूबसूरत नॉन फिल्मी सॉन्ग्स की दुनिया में, जहां हर गीत एक एहसास है और हर धुन एक प्यारी सी कहानी है।
1: भाईजान, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। कब तक कबूतरों की तरह छज्जे पे गुटर गुं करते रहोगे?
2: अरे बस बस, थोड़ा काम बाकी है, तुम कर लो नाश्ता।
1: ठीक है भाईजान, जैसे तुम्हारी मर्जी।
2: या अल्लाह, आज क्या बात हो गई।
1: भाईजान, जिन मोहतरमा का तुम इंतजार कर रहे हो ना, लगता है आज नहीं आएगी।
2: अरे चल भाग यहां से, मृतक की कहीं का।

0: श्रोता दोस्तों, आप एंजॉय कर रहे हैं नॉन फिल्मी सॉन्ग्स आकाशवाणी के रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज के सफर में आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, इस गीत को गाया है लखविंदर वडाली ने, और इस गीत के मिठास के साथ साथ अगर इसकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोहब्बत बेहद ही खूबसूरत चीज है, और मोहब्बत किसी से भी कहीं भी कैसे भी हो जाती है। इसके लिए सूरत का सुंदर होना, यानी कि मोहब्बत सूरत से नहीं सीरत से की जाती है, ये बेहद ही खूबसूरत एल्बम है, जरूर देखिएगा इसे। गीत के तुरंत बाद ही दोस्तों आपको बता दूं कि आप सुन पाएंगे 12:30 पर नॉर्थ ईस्ट परिचय, और आज बातें होगी खमती ट्राइब पर डॉक्टर नाम मानता जी के साथ। तो बने रहे आकाशवाणी के रेडियो पर 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और एंजॉय करें ये की, यानी कि लखविंदर वडाली की आवाज में।
1: मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आज मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ।
2: ये मुमकिन नहीं है।
1: लेकिन क्यों?
2: एक रोज की बात है, हम अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रहे थे।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: रंगवा लम्मा ले सोनु है तु नुयन के बो मा स्टेट मा तबी तबी होनुई बु डे डे कली खा राय ले हले के बा मा खंडोंग ले ngong kamot ha khama hampung ring se thai chu rakka rakho ha kang ha ho shon rui ba ha chu kali kha to ta ring pan ro pak long pan de ke ning ke ba ma chu khandong le chang ko zonu rang ma long ma ha de kali kha bo ma pang za ro ha यानमंग चोटले है कली खा तो ताशो शो खा तो कावंगले असुपे यंग चंग थे चु शो सा ती अथूले चों अंके रायले कांले जनके ती खाईदाई चा ले हुंगा लंगो को ओववा अंग रंगवा रंगमा लोमा मामा खा तो आताई लेंगो है ले यंग तम थे चु हायका मा ला ले आचा लंगो को रंगविन रहन खंगे ताता निंगे थम्सी तुईताई यंग ते थे चु Diaster Helpline 1077 ma Machi toke District Diaster Management Officer hato zaika koko. Eyaka khanak nu hanpak ma namai le Arunachal Pradesh Government khangke Department of Diaster Management ji makhangai phale. Eruma pati es CK ningke ba ma vanke ka pahai. Pati es si pongai ham khato yangsu thaiba. Ka po ron ren toke tuina dat le hai gali khato ta ngo habo ma. Ayong le jingo le ham mong to vai ngo ko. Hale yangsi ba ayong le ngo ko le. Nak ngwak ang phan mong kali ka po ron ren heya ta ta li to kap le. Ha to thung le ngo ko. La li ton li tuina dat ke e. Nak asat ang ma khang hiya. Ding ngam to chake ba le kap ko. Ham mong ma honu yang te thai ba. Phan mong ke tantong le ko hiya. Le phang ning ke to. A khom le dong le. Ha ma yip le ngo ko. Hale si pong e. Glass khirki thang me. Ka ha khia ka tuk ning ke phai. Achai le ngo ko. Hale si ke ma dang tan to. Phan mong ke li ta ta li to. Kap le vai ngo ko. Ham mong to ke. Hale. सीले अचन के राख फैमति लाइको कोतो असुक यांगचंग थैचु हमपुंग वनथोंग बोमा रुरेनिंग के हातो चिसोले अचाइले ngoko गारीमा अहमले असुक यांगचंग थैचु हलेसी के मादांगतांतो लमशुई लमका तो आचाले राखले शानले ngoko हलेके पोंगमा वनरुहिया लमता कली खातो लमपोंग तो तराक पति रेनुम यांगसिबा कनबत मोंगबत डोंग अंके राइले हलेसी फैमचु खानडोंगले ngoko हले सी के मा थामसी तुइताय के यांगते थैचु डाइजेस्टर हेल्पलाइन 1077 मा माची टोके डिस्ट्रिक्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हतो होको एयका अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट खांग के डिपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट ची मखांगे फाले

दोस्तों आप बने हुए हैं और जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज के सफर में आरजे नूरी के साथ और कर रहे हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से और आनंद उठा रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। चलिए बढ़ते हैं हिंदी फिल्मी गानों के सेगमेंट पे। ये आखिरी गीत और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि 1 बजते ही आप हिंदी में समाचार सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो बने रहिए आकाशवाणी का RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes, stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life. Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaborations. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion US dollars by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the US and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani bases and said comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to U.S. President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's defense minister, Khwaja Mohammad Asif, rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with a TV channel. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. And that is the end of this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के RFM 103.1 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियोज में। और आप बने हुए मेरे साथ यानी RJ नूरी के साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। दोस्तों, संगीत प्रेमियों की इस खूबसूरत महफिल में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। और इस महफिल को यानी कि सेगमेंट को मैंने संगीत प्रेमियों का खूबसूरत महफिल इसलिए कहा है क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपके लिए प्ले करते हैं एक ऐसा प्लेलिस्ट जो 1960s, 70s और 80s के होते हैं। और अक्रॉस द जनरेशंस 1960s, 70s और 80s के गाने इतने पॉपुलर है ना कि आज के जनरेशन को भी अपनी प्लेलिस्ट में मैंने देखा है या सुना है 60s, 70s और 80s के गाने रखते हुए। तो आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 60s, 70s एंड 80s यानी कि हिंदी क्लासिक म्यूजिक। दोस्तों, एक ऐसा सेगमेंट जहां हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उन सुनहरे दशकों को जिन्होंने संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की भावना का हिस्सा बना दिया था। दोस्तों, वो गीत आज भले ही पुराने हो गए हों और ऐसा लगता है कि कोई दब्बा बंद चीज है, लेकिन आज भी कितना रेलेवेंट है वो हमारे जो यंगर जनरेशन है उनसे पूछिए, क्योंकि आज इतने अलग अलग किस्म के जॉनर के म्यूजिक के होते हुए भी 1960s, 70s और 80s के गाने आज भी वो लोग सुनते हैं। तो उन्हीं के लिए हमारे RFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हमने सजाया है हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s, 70s एंड 80s। तो हम शुरू करेंगे इस खूबसूरत गीत के साथ।

यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ डीडीएमए कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। एसी ईटानगर नाहरलगन एवं सीओ बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 700576011 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे हैं 1960s, 70s और 80s के कुछ हसीन नगमे मेरे साथ, यानी अपने रेडियो साथी आरजे नरी के साथ। आप सभी के बहुत ही चहेते कार्यक्रम है ये और चैनल आप सभी का, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के ईटानगर का एफएम बैंड। दोस्तों, 60s का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है, जब हर गीत कविता जैसा लगता था। संगीतकारों की धुनें और गीतकारों के अल्फाज बिल्कुल जादू रचते थे। उस दौर में मोहम्मद रफी की आवाज में मोहब्बत की मासूमियत होती थी, मुकेश के गीतों में दर्द की सच्चाई होती थी और लता मंगेशकर की आवाज मानो हर एहसास को सूर दे देती थी। फिर आया 70 का दशक, जहां संगीत ने एक नया रंग लिया। रोमांस और मस्ती के साथ साथ जिंदगी के दर्शन भी गीतों में सुनाई देने लगी। दोस्तों, इस दौर में किशोर कुमार का जादू हर दिल में छा गया। उनकी आवाज में शरारत भी थी, दर्द भी और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी। और उसी दौर में राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज और अमिताभ बच्चन की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस गीतों को और भी यादगार बना देती थी। और फिर आया वो जमाना, यानी कि आया 80 का दशक, जहां संगीत में नई तकनीक, नई बीट्स और नई ऊर्जा देखने को मिली। डिस्को का दौर आया, लेकिन मेलोडी का जादू फिर भी बरकरार रहा। बप्पी लहरी की धुनों ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया और वही आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हर पार्टी और हर महफिल की जान बन गई। दोस्तों, इन तीनों दशकों के गीत सिर्फ गाने नहीं है, ये हमारी यादें हैं और हमारे रिश्तों की खुशबू है। वो एहसास है जो पीढ़ियों को जोड़ते चले आ रहे हैं। किसी को अपने बचपन की याद दिलाते हैं, तो किसी को पहली मोहब्बत की, तो किसी को माँ की लोरी याद आती है, तो किसी को दोस्तों के साथ बिताए वो पुराने दिन। चलिए, हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s, 70s एंड 80s आप सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत, आप सभी की यादों के नाम।

दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये खूबसूरत संगीत सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज के इस संगीतमय यात्रा में हमने साथ चलकर याद किया 60s, 70s और 80s के वो सुनहरे गीत जिन्होंने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारी यादों, हमारे एहसासों और हमारी जिंदगी को भी एक नया रंग दे दिया है। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आप सभी के चहेते चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों, हर गीत ने हमें कहीं ना कहीं छू लिया, कभी मुस्कुराहट दी, कभी यादों में ले गया, तो फिर कभी दिल को थोड़ा सा भावुक भी कर दिया। दोस्तों, संगीत की यही तो खूबसूरती है, ये समय से परे होता है और दिलों को हमेशा जोड़ कर रखता है। और आज हमने जिन सदाबहार आवाजों को महसूस किया है, उनके बिना हिंदी सिनेमा का इतिहास अधूरा है और इन गीतों की मिठास आने वाले समय में भी यूं ही बनी रहेगी। दोस्तों, पुरानी यादों की सुनहरी गलियों से निकलकर अब वक्त आ गया है एक नए सफर की ओर बढ़ने का, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां 60s, 70s और 80s की मिठास हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। वहीं अब हम कदम रखते हैं आज के नए दौर की धुनों की दुनिया में, नए अंदाज, नई बिट्स, नई सोच और आज के समय की बदलती भाषाओं को बयां करती हुई संगीत की नई भाषा। चलिए हिंदी फिल्मी गानों के सफर पर चलते हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून

उनके आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास ना करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने। दोस्तों आपको कनेक्ट करो आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियोज मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार के लिए। सुन लेते हैं हिंदी फिल्मी गानों में ये आखिरी गीत और आपको ये भी याद दिला दो कि आप मेरे साथ यानी आज जनवरी के साथ जुड़ेंगे ठीक 2:30 पर हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ यानी आज जनवरी के साथ करने के लिए दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

0: हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने वैधानिक शक्ति कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना पत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है।

0: इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभो मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी

0: यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड न्यूज तथा दोपहर समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2:30 पर हम फिर लौट कर आएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। जी हाँ, हम चलेंगे यादों की उसे सुनहरी गलियों में, जहाँ हर धुन दिल को छू जाएगी और हर वो गीत एक हमारी कहानी कहेगी, यानी कि यादों की कहानी। दोस्तों, आज का यह हमारा सफर समर्पित है 90s के उस दौर को, जिसने हमें दिए कुछ ऐसे अमर गीत जो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने उस समय थे। या आज भी हम जब लिसनर से बातें करते हैं और पूछते हैं कि आपको कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो उनका यही कहना है कि हिट्स ऑफ 90s बेस्ट है। तो हिट्स ऑफ 90s आप सभी का चाहता कार्यक्रम है और उम्मीद करते हैं कि हम हर वो गाना आप तक पहुंचाए जो आपकी यादों में शामिल है। तो आइए इस गीत की यात्रा की शुरुआत करते हैं एक बेहद यादगार फिल्म से। जी हाँ, आज मैंने पूरा जो सेगमेंट है हिट्स ऑफ 90s को डेडिकेट किया है 1992 को, और जी हाँ, उस साल का वो फिल्म दीवाना आज भी लोगों को दीवाना बनाता है। उस फिल्म के एक एक गीत आज भी हमारे दिल की कहानी कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गीत से। दोस्तों, कहते ना कि कभी कभी प्यार में सवाल होते हैं और दिल खुद से ही जवाब ढूंढता है। ऐसे ही एक खूबसूरत एहसास लेकर आया है यह गीत, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, फिल्म दीवाना से।

दोस्तों, इस गीत ने 90s के रोमांटिक संगीत को एक नई पहचान दी थी और कुमार सानू की आवाज और दिल को छू लेने वाला संगीत हर सुनने वाले को अपने प्यार की याद दिला देता है। चलिए आनंद लीजिए।

कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का आनंद ले रहे हैं आप मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। और आज हम बातें कर रहे हैं हिट्स ऑफ 90s में फिल्म दीवाना की और दीवाना फिल्म के कुछ हसीन नगमों की। दोस्तों, प्यार अगर जुनून बन जाए तो वह दीवानगी कहलाता है। और हमारा जो अगला गीत है एक ऐसा गीत जिसने दीवानगी की हद ही बदल दी थी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। दोस्तों, इस गाने में सिर्फ संगीत नहीं था बल्कि एक ऐसी दीवानगी थी, ऐसी भावना थी जो दिलों को जोड़ देती है। और मोहब्बत में जो दीवानापन है वो इस फिल्म में और इस गीत में बिल्कुल छलकता है। दिव्या भारती और शाहरुख खान की केमिस्ट्री और अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज इस गीत को और भी बेहतरीन और अमर बना देती है। आज हिट्स ऑफ 90s में फिल्म दीवाना से ये अगला गीत आप सभी के लिए।

वायरल का जमाना है। जी हाँ, तो जरा सोचिए, जब इंटरनेट नहीं था तब क्या सच में 90s में प्यार या मोहब्बत अगर हो जाती तो वायरल नहीं होता था? बिल्कुल होता था, बस तरीका थोड़ा अलग हुआ करता था। कानों कान, बातों बातों में, कभी इस गली से उस गली तक, कभी दोस्तों की महफिल में, तो कभी बस यूं ही किसी की मुस्कान में। और सच पूछिए तो उस इंतजार की मिठास को 90s के लोग ही समझ सकते हैं और वही बता सकते हैं कि इंतजार का मिठास क्या होता है, क्योंकि उस वक्त टाइपिंग या लास्ट सीन ऐसा कोई होता ही नहीं था। दिल की धड़कनों का इंतजार होता था और वो खत जो महीनों तक बस एक उम्मीद बनकर आता था और फिर उसे बार बार पढ़कर दिल में ऐसे संजो लिया जाता था जैसे कोई खजाना हो। और शायद यही वजह थी कि उस दौर में एक गाना सिर्फ गाना नहीं था, वो पूरी जिंदगी की याद बन गया था। यही था 90s, धीमा भी और बेहद ही गहरा भी। अब पेश है ऐसा गीत जो इंतजार की हर हद को बयां कर सकता है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, उस दौर में इंतजार भी बहुत खूबसूरत लगता था क्योंकि दिल को यकीन होता था कि एक की एहसास सच्चे है और लौटना भी मुमकिन है। ये गाना उन सभी दिलों के लिए है जो आज भी किसी अपने के लौट आने की उम्मीद अपने दिल में जिंदा रखते हैं। और दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी के FM बैंड 103.1 MHz अरुण FM पर और आप आनंद उठा रहे हैं आप सभी का बहुत ही चहेता कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s रेडियो साथी RJ नुरी के साथ।

हिट्स ऑफ 90s में फिल्म दीवाना के इन हसीन नगमों के साथ इस आखिरी पेशकश आप सभी के लिए। बेहद ही मासूम और दिल की सादगी को बयान करता है ये आखिरी गीत फिल्म दीवाना से, तेरी इसी अदा पे सनम। दोस्तों, और आपको याद दिला दूं कि 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस, और 3 बजे का समय रहेगा मिशमिश श्रोताओं का कार्यक्रम, और उसके तुरंत बाद 3:15 से आप सुन पाएंगे ताई खमती कार्यक्रम, और हम फिर आपके साथ होंगे 3:30 पर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आज की यह संगीत यात्रा यानी कि हिट्स ऑफ 90s की यह यात्रा यहीं पे समाप्त हो रही है, लेकिन ये यादें, ये गाने और ये 90s की सादगी हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। चलिए लीजिए, आनंद लीजिए ये आखिरी गीत।

नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़, मीडियम वेव्स सी पक्षे सिप सी चुमसी मीटर्स हो पक्षे सिप हा किलो हर्ट्स में नई चलांग खामते खामती हाउने को मायो मनेवन बुग्धु लांगनी पीते सोंग हिंग पाक साउतु नई इंगना जी पी मई सोंग हिंग साउ हो कौ खाम लुक नांग प्रिया लोंग फोय मई हनै थोम तिखा सेंटर नई कचम हाई लेवल कमिटी अनलिंग चा आउ अड्रेस अन्यप अन्याक अन डेमोग्राफिक चेंज लाइप इनफिल्ट्रेशन खन संपोंग लोई मै आउसी कंस्टिट्यूट हेड मा कायाउ कमिटी नै फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रभाकर नावलेकर हेड होसी तिनंगन तिखा मायाउ सेंसस कमिश्नर तंगलोई फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हिची दुर्गा शंकर मिश्रा फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर बालाजी श्रीवास्तव खनसम इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शामिका रवि नई कचम ओपिन मेंबरसी कमिटी मई अपॉइंट हिटमा नमहो जॉइंट सेक्रेटरी अन होम मिनिस्टर नई कचम पिन मेंबर सेक्रेटरी सी कमिटी मई तिनंगन मा दिखायाओ सुप्रीम कोर्ट वन मने मई अन लीगलिटी अन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अन इलेक्टोरल रोल लुकन पा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई हल सफू

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz और मैं आप सभी की आज की सफल रेडियो साथी आरजे नूरी। दोस्तों, घड़ी के अनुसार 3:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम हाजिर हैं बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। और बॉलीवुड अपडेट्स में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे रिकॉर्डिंग कहानी के पीछे जहां संगीत बना इतिहास और 3 दिग्गज एक ही फ्रेम में आ गए। फिल्म था दिल से, AR रहमान, लता मंगेशकर, साथ में शब्दों के जादूगर गुलजार साहब। दोस्तों, दिल से फिल्म का जिया जले पहला गीत था जो लता जी ने AR रहमान के लिए गाया था। रहमान साहब का तरीका है कि वो अपने गीत चेन्नई स्थित अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं। ये गीत रिकॉर्ड होने से पहले ही गीतकार गुलजार साहब जरा टेंशन में आ गए थे। उन्हें शक था कि कहीं लता जी जैसी बड़ी गायिका ये ना कह दे कि वो क्यों चेन्नई जाकर रिकॉर्ड करे, लेकिन लता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। गीत का ऑफर मिला तो वे बेझिझक चेन्नई आने को तैयार हो गई, जबकि वो पहले कभी AR रहमान से मिली भी नहीं थी, ना ही उन्हें पता था कि चेन्नई में AR रहमान का स्टूडियो किस जगह पर है। गुलजार साहब लता जी को अपने साथ चेन्नई ले गए। रहमान साहब जब लता जी से मिले तो वो बहुत सम्मान के साथ पेश आए। यूं तो रहमान के चेन्नई में कई स्टूडियोज हैं, लेकिन लता जी से ये गाना रिकॉर्ड कराने के लिए उन्होंने वही स्टूडियो चुना जिसे सबसे पहले उन्होंने बनवाया था। रहमान साहब ने लता जी को धुन सुनाई, काम शुरू हो गया। दोस्तों, लता जी को जब सिंगर के कैबिन में ले जाया गया तो एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल लता जी को आदत थी म्यूजिक डायरेक्टर से नजरें मिलाकर गाने की, मगर रहमान के उस स्टूडियो में ना तो लता जी को मिक्सिंग टेबल नजर आ रही थी और ना ही वहां से लता जी को कुछ दिखाई दे रही थी। एक दफा रिहर्सल करने के बाद लता जी ने अपनी दुविधा गुलजार साहब को बताई और कहा, लग रहा है जैसे मैं अंधी हो गई हूं। लता जी को बेहतर महसूस करा सके, वो ठीक से रिकॉर्डिंग कर सके, इसके लिए गुलजार मिक्सिंग रूम में सिंगर केबिन के बीच के दरवाजे में कुर्सी डालकर बैठ गए। रहमान ने गुलजार साहब से कहा भी कि वो अपने किसी असिस्टेंट को वहां बैठा देंगे, लेकिन गुलजार साहब ने मना कर दिया। और उस दिन गुलजार लता जी AR रहमान के बीच की कड़ी बन गए। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और लता जी ने एक ही टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिया। दोस्तों, गाना कंप्लीट करने के बाद लता जी और गुलजार मुंबई लौट गए। कुछ दिन बाद AR रहमान ने गुलजार साहब को फोन किया और बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में चर्चा करने लगे। साउथ इंडस्ट्री में जिसे बैकग्राउंड म्यूजिक कहा जाता है, उसे मुंबई में इंटरल्यूड म्यूजिक कहा जाता है। उसी दिन रहमान ने गुलजार साहब को यह भी बताया कि उन्होंने मलयालम भाषा में एक महिला व पुरुष से एक कोरस रिकॉर्ड करा कर गाने के अंतरे के बीच में डाल दिया है। रहमान ने गुलजार से यह भी कहा कि वो इसका मतलब उन्हें भेज देंगे, गुलजार साहब उनका हिंदी अनुवाद कर दे ताकि हिंदी में किसी से रिकॉर्ड करा लिया जाए। तो दोस्तों, इसी तरह से बना था दिया जले। चलिए बॉलीवुड अपडेट्स में सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे मेरे साथ बॉलीवुड अपडेट्स में आर रहमान, लता जी और गुलजार साहब के ये आइकॉनिक म्यूजिक, यानी कि एक ऐसा जादू जो इन तीनों के वजह से ही बना। दोस्तों कुछ ही पलों में यानी कि 3:40 पर वांचो श्रोताओं का समाचार सुन पाएंगे और आप बने रहिए आकाशवाणी के RNFM 103.1 MHz पर। हम फिर से लौट कर आएंगे हिंदी फिल्मी गानों के साथ 3:45 पर। यूं ही गुनगुनाते रहिए और जिंदगी के साथ यूं मुस्कुराते रहिए और दिल से दिल की बात करते रहिए गीत गानों के माध्यम से।

0: श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर फिल्मी गानों का यह बैक टू बैक सफर जारी रहेगा कुछ ही पलों में। फिर से जुड़ेंगे 4:05 पर फिल्मी गानों के साथ। उससे पहले लीजिए सुनिए ईडो मिश्मी श्रोताओं का ये समाचार।
1: मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा।
2: अभी आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है ईदू मिशिमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
3: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर श्वाला पोची जानेलो हिउ लेरुलिनी एतानेची ईदू मिशिमी आहोला केजी दरगालंबो आउता ची इमु में लेते गए इमु ने आतिका ची इमु ची ये चु ऐने बा ऐला बु ऐगा ची पुआ अतु सुकना उदा लाने सेंटर में बहा सुप्रीम कोर्ट जज शायबा जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर में हेता नेला इमु का चालम ची कमिटी के अजितिका बदा आहोगा सेंसस कमिश्नर दुर्गा शंकर मिश्रा आईपीएस आजा शायबा बालाजी श्रीवास्तव दोने इदिया उपु असला डॉक्टर सामिका देवी ची आ कमिटी माचे मेंबर आजगा बमह होम मिनिस्ट्री माचे जॉइंट फॉरेन सेक्रेटरी आजा मैम आ कमिटी माचे मेंबर सेक्रेटरी शावदा लगा इलेक्शन कमीशन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अखाय बचा है यहागा बगुम चिपिदा ने सुप्रीम कोर्ट में लगा नैम अवता चिपिदा लाने इलेक्शन कमीशन में बोर्ड आज पुमाने ही लगा बा इमो नंबर ची आमु एम एर अलग कोको महो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथी जी ना लातेगा बता आ होगा चाइना में पाकिस्तान को ला होंबेगा महो जम्मू ने कश्मीर है पाकिस्तान में जिता ला चा है एक ही पिगा दा ने इंडिया में जे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जे ला होएगा रणधीर जायसवाल में लगाने यहाँ तक दाता ची आती का बने जम्मू ने कश्मीर है इंडिया को कोची आती दा ने आसागा दा ला होगा ऐतान्य है इंडिया तिहता तो योग बने उन्हें चीने इंडिया तिहता तो पाओ हैं तो प्राइम मिनिस्टर शरूबा पंडित जवाहरलाल नेहरू शिबा मगरवानी नुबा इन्हीं नगा इन्हों मामला हुई अने ये हो कि निमाची नो तंगला पोची जी होल पी माची नहीं आएगा नेहरू है इन्हों मामला हो कि ने तारहु का पी माची नो शोला पोची जानियो हेवो माची नहीं शिबा महो आ वालगा जिदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में लगातार आहोगा असुनी के बने चला पूछे जानो हिफिनी माची ने जासू के माची ने लिवा तिराप डिस्ट्रिक्ट खुमसाती बने अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस एपीएसटीएस खाए बा मंगरू नु बा इनी एनागा उमा इमु के बा इगा ना ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग में लगातार आहोगा अरुणाचल प्रदेश माचे कॉमर्स दोने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर न्यात दुकान में बुनी चांगलांग ने बालिनो अतिकोची स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड मा अथु बने अतिकोची आजाबाबू दोने इकिशाय मोनम रोगो चिचाय बता आहोगा आ एसईजेड शो ने अजितेंदो जी ना लाने अतिकोची इमु में मेमोरेंडम आजो हतिगा मा देहिंग माची माने अतिका बुहा जी ना लाया एको बुहे खेर पगता आहोगा आजो हाथे चिपुआ अथु उदा ने मिनिस्टर में लगाने चीफ मिनिस्टर प्रेमा खंड में हेता ने गवर्नमेंट में अतिका प्रम प्रम ज्योतिगा उदा ने दुकान में लग पता आहोगा तिराप डिस्ट्रिक्ट में चे चपहे शरू बने शिप यपा अशोक चक्र हंगा बा हंगपंग दादा शिबा इनी असम राइफल्स में बुनी एनागा मचिनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन में आ वाला जिदा ला है आहोगा आ शिबा माचिनी बोरदोरिया अतिकोने असम राइफल्स में बिहुली नबा बलिदान दिवस एनागा मा मिनिस्टर दोने आतिकाची एम एल ए वांगलिंग लोवांगदोंग आई दोने एकिशा इमु उखो गिगा बने दादा सिचे ब्रोचा आसिपु अखाय बमह तवांग लोवांगदोंग ऑडिटोरियम मने दादा वाला मा कल्चर प्रोग्राम के अखाओगा लदा ला होगा मिचालम्बू में योगा मने में आ इकुजी ना लाने आ थोपुमा लाताची गने यूनियन आयुष मिनिस्ट्री में इगावे थाला पुची जानियो खे माचिनी इंटरनेशनल योगा दे इनी एनागा उदा ने मिनिस्टर प्रताप राव जाडोप में ओना मध्य प्रदेश खुजराहू माचे योगा पार्क माने योगा मचे तो है भाई अब महोला बता होगा इंडिया मचे योगा प्रोग्राम अच्छे तो है कोलकाता में अखगा ला होगा इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर कैडर को कोच टेक्निकल हारोमा स्टाफ इमुम में है लिबाचा गेट एग्जाम अखाए बमन ने खेतिका उदा ने डिफेंस मिनिस्ट्री मच में ला होगा ने आ स्कीम को कोमा ने इंडियन एयरफोर्स मच आ डिपार्टमेंट में युदा उया में प्रीलिम एग्जाम जुजिगा में उदा ला होगा इंडियन आर्मी मच अग्निपथ स्कीम को कोमा ने चौपाही सावदा उया के बने इंगे थाला पुची एलम मच ने जिहुलु निमाचिनिबा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अखगा उदा ला होगा पपुम परे लापगे अरुणाचल प्रदेश मचे होलोके डिस्ट्रिक्ट मचे आतिका ब्रागमा नाप्रा आयोदो ने आरुण्या मया अबली चो सदा ने ईटानगर मीटोरोलॉजिकल सेंटर मचे में ला होगा एतनिची ईद मिसमी आहो अली माओ दबाए
4: एचा आकाशवाणी ईटानगर दिवगर नाले ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महा।

दोस्तों आप सुन रहे थे ईडू विश्व श्रोताओं का समाचार। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुना ईडू विश्व श्रोताओं का कार्यक्रम तो ट्यून इन कर पाएंगे मीडियम वेव के 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी के ईटानगर के केंद्र। लीजिए सफर फिर से जारी रखते हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी गानों का सफर मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दूसरी प्रसारण सभा का सफर आरजे नूरी के साथ इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है। श्रोता दोस्तों, उम्मीद है कि आज की बातें, आज की यादें और गीत आपके दिल में मुस्कान और सुकून की हल्की सी रोशनी छोड़ गए होंगे। और अब हमारी तीसरी प्रसारण सभा को और भी खास बनाने के लिए स्टूडियो में आ पहुंची है आपकी अपनी आरजे नीलम, जो अपनी शानदार अंदाज और दिलकश आवाज और बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ आपकी इस शाम को और भी हसीन बना देंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आकाशवाणी के अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। श्रोता दोस्तों, 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांसा श्रोताओं का समाचार और 4:25 पर आरजे नीलम आपके साथ गुड इवनिंग ईटानगर के साथ जुड़ेंगी। तब तक प्रसारण अधिकारी पी डोले तथा तकनीकी अभियंता ए के सक्सेना और मुझे यानी आरजे नूरी को दीजिए इजाजत। शुभ दिन।

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हमारे प्यारे श्रोता मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इस तीसरे प्रसारण सभा में मैं हूं आपके हम सफर, आपके अपने रेडियो साथी नीलम। दोस्तों, अब तक के सफर में यानी दूसरे प्रसारण सभा का आप आनंद ले रहे थे आपकी चहेती आरजे नूरी के साथ। आरजे नूरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिचय के लिए और स्टूडियो के आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए। श्रोता मित्र, अभी समय हो रहा है शाम के 4:28, तो चले इस प्रसारण सभा का आगाज करते हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

श्रोता मित्रों, यदि आपने तंबाकू या गुटखा छोड़ने का बना लिया है मन, तो आजमा कर देखिए कुछ आसान और असरदार तरीका जो आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। क्या पता इससे आपका फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू और गुटखा एक धीमा जहर की तरह काम करता है, जिसका असर बहुत ही बुरा होता है। पहले पहल शौक में गुटखा तंबाकू खाना शुरू करने वाले को बाद में इसकी लत लग जाती है और वो इसका आदि हो जाता है। गुटखा या किसी भी प्रकार के तंबाकू को छोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसकी लत इतनी बुरी होती है कि लोगों का घर इसमें बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो इसे छोड़ नहीं पाते। ऐसे में अगर आप गुटखा छोड़ना चाहते हो तो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जो गुटखा छोड़ने में मदद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, उन स्थिति और इमोशन पर ध्यान दें जो आमतौर पर आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित करती है। सामान्य ट्रिगर्स में तनाव, बोरियत या गुटखा का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के आसपास होना शामिल हो सकता है। अपने तलब को कम करने के लिए गुटखा के स्वस्थ विकल्पों की पहचान करें, जैसे शुगर फ्री च्युइंगम आप चबा सकते हैं और भी कई सारी चीजें। तो दोस्तों, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चला है एक गीत का।

श्रोतामित्र आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम की आवाजों में। आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। और हाँ श्रोतामित्र, कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू या गुटखा, जी हाँ, छोड़ने के कुछ उपायों के बारे में है। दोस्तों, अपनी तलब को कम करने के लिए गुटखा के स्वस्थ विकल्पों की पहचान करने की बात की गई थी, जैसे कि आप शुगर फ्री च्युइंगम चबा सकते हैं और भी कई सारी चीजें। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुटखा, जी हाँ दोस्तों, छोड़ने के अपने फैसले के बारे में अपने परिवार, दोस्तों और अपनी करीबियों को बताएं और इसे छोड़ने के लिए उनके मॉरल सपोर्ट की हेल्प ले। अपने दिमाग और खुद को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी करें जो आपको गुटखे के बारे में विचार करने पर फोर्स ना करे, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करें या म्यूजिक डांसिंग का सहारा लें। तनाव को मैनेज करने के लिए हेल्दी तरीके निकालें, क्योंकि यह तंबाकू खाने के लिए आपको ट्रिगर कर सकता है। एक्सरसाइज करने से भी तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। और हाँ श्रोता मित्र, अपने आप को उन कारणों की याद दिलाइए कि आप गुटखा क्यों छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि अपने हेल्थ में सुधार करना, पैसा बचाना या अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए, जो आपको गुटखा छोड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही अब हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे ये बेहद ही खूबसूरत गीत मोहित चौहान की आवाज में, दिल तो बच्चा है जी फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि जी हाँ, गुटखा छोड़ने पर चिड़चिड़ापन, क्रेविंग या सिरदर्द हो सकता है। ऐसे में इन बातों से घबराए नहीं और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। गुटखा छोड़ने के जर्नी में किसी माइलस्टोन को अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड दे। अपने आप को किसी ऐसी चीज से ट्रीट करें जिसका आप आनंद लेते हैं। जी हां श्रोता मित्रों, आप में से यदि किसी को तंबाकू या गुटखा खाने की लत है और इसे छोड़ना चाहते हैं, तो इन उपायों पर अमल करके देखें, शायद आपके लिए मददगार साबित हो। तो श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं

श्रोता मित्र, कार्यक्रम का यह आखिरी गीत आप सुन रहे थे वाटर फिल्म से सुखविंदर सिंह और साधना सरगम ने इसे गीत में आवाज दी है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। और श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश में 188 साल बाद ब्लूबेरी की एक दुर्लभ प्रजाति फिर से खोजा गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस खोज को अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय कहा। भारत और कनाडा में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आयातों को और आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है।

0: नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने इस आईआर को पूर्ण संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा है कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था रहेगी। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा है कि वे भरपूर पानी पिए और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता के साथ और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध भी किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस से आए लगभग भाग लेने वाले छात्रों से बातचीत भी की। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के महत्व पर जोर देते हुए राज्यपाल ने युवाओं को ऐसे कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जो सांस्कृतिक समझ, भावनात्मक जुड़ाव और साझा राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता हो। राज्यपाल ने युवाओं से पारंपरिक मूल्यों, स्वदेशी ज्ञान, भाषाओं और संस्कृति के प्रथाओं के साथ संरक्षित करने का भी आह्वान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली की दिशा में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि कोस समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव विदेशी एक इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मूल पहचान की सुरक्षा आपस में गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, खासकर सीमावर्ती राज्य और पूर्वोत्तर के लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए सांस्कृतिक विरासत, जनसांख्यिकी संतुलन और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना केवल एक नीतिगत मामला नहीं बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी है। शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर के दूरदराज के जंगलों में ब्लूबेरी के एक दुर्लभ और लुप्तप्राय वेसिनियम पिलिफेरम को फिर से खोजा गया है। इसे पहली बार 1836 में दर्ज किए जाने के लगभग 188 साल बाद फिर से खोजा गया है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इस खोज को एक बड़ी वनस्पति उपलब्धि और भारत के जैव विविधता रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि वेनिसिनियम पिलिफेरम इराकेसिया परिवार से संबंधित ये, जिसमें ब्लूबेरी और क्रैनबेरी शामिल होते हैं। संस्थान के एक सूत्र ने बताया है कि इस प्रजाति का हाल ही में सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NEIST और सहयोगी संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा फिर से खोजा गया है।

0: जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर से रहने वाले डॉ. मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने कोचिंग केंद्र में मालिक से बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हरदर्श कुमार शाह है, जो पुणे में स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभुल मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स के फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोप में मनीषा हवलदार से मिले थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कूटनीति एवं कार्यनीति क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $50 अरब तक बढ़ने के लक्ष्य की पुष्टि की है।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: और आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली में न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शब्दशाची भट्टाचार्य जी। द सुप्रीम कोर्ट टुडे अपहेल्ड द लीगलिटी ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑब्जर्व दैट इलेक्टोरल SIR एडवांसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपरेटिव ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द कोर्ट हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू कंडक्ट SIR अंडर आर्टिकल 324 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 एंड द रूल्स मेड thereunder. The court said free and fair elections depend on accurate and credible electoral rolls and observed that the Election Commission's revision exercise aims to remove possible errors and duplication caused by migration, urbanization, and decades without an intensive revision. The Cabinet today approved continuation of the scheme for assistance in ration transport and handling income with automation in PDS, Sarthak PDS as an umbrella scheme in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, will support for fair price shops and help in modernization of public distribution system. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. The committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi were appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreign Affairs in Home Ministry will serve as Member Secretary in the committee. Meanwhile, Chief Minister Pema Khandu has welcomed the center's decision and said national security and protection of indigenous identity are deeply connected, especially for border states and the Northeast. In a social media post, he said, quote, for states like Arunachal Pradesh, safeguarding cultural heritage, demographic balance and social harmony is not merely a policy matter, but a responsibility towards future generations, unquote. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Ministry said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 5:09 हो रहे हैं और इसके साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब। और जी हाँ श्रोता मित्र, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब में। तो चलिए कार्यक्रम के शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं के आवाज में ये बेहद ही खूबसूरत गीत लाइफ इन ए मेट्रो फिल्म से।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं इवनिंग ट्राइब कार्यक्रम और इसे गीत का आप सुन रहे थे गुरु रंधावा की आवाज में फिल्म हिंदी मीडियम से। जी हाँ श्रोता मित्रों, कुछ लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वे दूसरों को बोलने का अवसर ही नहीं देते। उनको लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वे जो कुछ भी कहते हैं वो ही सर्वपरि होता है। ऐसे मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है। वे सिर्फ अपनी बात कहकर खत्म कर देते हैं, बगैर ये जाने कि सामने वाला उनकी बातों पर दिलचस्पी ले भी रहा है या सिर्फ इग्नोर कर रहा है। जब हम एक दूसरे से संवाद करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं, तो उसमें दोनों का योगदान होना भी आवश्यक है। संवाद सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि दो लोगों के बीच का संतुलन है। उनमें से एक वक्ता तथा दूसरा श्रोता होता है। जी हाँ, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। अगर एक ही बोलता रहेगा तो संवाद अधूरा रहता है। यदि आप सिर्फ बात करने के आदि है तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। जी हाँ, वो कहते हैं ना, ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप में से भी किसी को ये आदत है, आप भी ज्यादा बोलते हैं और दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते या दूसरों की बातें सुनना ही नहीं चाहते, तो आप अपने व्यवहार में सुधार कर सकते हैं, अपने बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

0: जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे मणिकर्णिका फिल्म से ये खूबसूरत गीत राजा जी। तो इसके साथ ही इवनिंग ट्राइब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि हिंदी फिल्में गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ यानी कि अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। अरुणाचल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुँची, मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz।

श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:32 हो रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम शाम की महफिल में। श्रोता मित्रों, ये मोहब्बत में आंखों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि आंखें भी होती है दिल की जुबा, बिन बोले कर देती है हालात ये पल भर में बयां। जी हां, आंखें भी होती है दिल की जुबा। जी हां श्रोता मित्र, आपको सुनवा रहे हैं हासिल फिल्म से बेहद ही खूबसूरत गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में।

0: कहो कहाँ चले जहाँ तुम ले चलो जी हाँ, ये बेहद ही खूबसूरत जी हाँ ऐसे गीत को आप सुन रहे थे बुलंदी फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्रों, शाम के महफिल प्यार भरे एक खूबसूरत संगीत यात्रा में आप श्रोता मित्रों बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। फिलहाल श्रोता मित्र आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट Illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे लगान फिल्म से ये बेहतरीन गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, ए आर रहमान के संगीत, उदित नारायण, वसुंधरा दास और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में आप सुन रहे थे लगान फिल्म के इस गीत को। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं रुन एफ एम 103.1 मेगा हर्ट्स पर और आप आनंद ले रहे हैं शाम की महफिल कार्यक्रम का। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला बेहद ही प्यारा गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, शाम की महफिल, प्यार भरे खूबसूरत संगीत यात्रा में आप जुड़े हुए थे और कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे छावा फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म में गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहे अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे दो रास्ते, फिल्म का एक बेहद ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीतों का। तो चलिए इसी के साथ ही अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आंधी फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम का आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। श्रोता मित्र, हमारे अरुण एफएम के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, हिंदी सिनेमा में 60 और 70 का दशक बड़ा ही खूबसूरत दशक कहा जाता है। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में नई कहानियां लिखी जा रही थी। इसी दौर में एक ऐसी अदाकारा आई जिसने अपने स्टाइल से सबको दीवाना बनाया। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे जवा दिलों की धड़कन बन गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साधना शिवदसानी की। जी हाँ, उनके बारे में आगे जानेंगे कई सारी बातें, इससे पहले सुनिए गीत।

श्रोतु मित्रों, इस गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, मेरा साया फिल्म से। दोस्तों, अच्छी फिल्म में अच्छा नाम तो मिला ही। जी हाँ, बात कर रहे हैं साधना शिवदसानी की। उन्हें अच्छी फिल्म में अच्छा नाम तो मिला ही, साथ ही इस अदाकारा ने सफलता भी खूब पाई। लेकिन अक्सर सब कुछ मिल जाए ऐसा भला कहाँ हो सकता है। इस एक्ट्रेस की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। चले जानते हैं साधना शिवदसानी की जिंदगी की अनकही दास्ता। श्रोता मित्रों, साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश इंडिया के कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से साधना का परिवार मुंबई आकर बस गए। साधना को बचपन से ही एक्टिंग से लगाव था। साधना को पहली फिल्म मिलने का किस्सा भी दिलचस्प है। साधना को पहली फिल्म महज 14 साल की उम्र में मिल गई थी। ये फिल्म राज कपूर की श्री 420 थी। इस फिल्म में साधना ने महज एक छोटा सा किरदार निभाया। साधना फिल्म के गाने मुड़मुड़ के में बैकग्राउंड डांसर बनी नजर आई। साधना को लंबे वक्त तक कोई काम नहीं मिला। घर की स्थिति भी इस बीच खराब होती चली गई। ऐसे में उन्हें नौकरी भी करनी पड़ी। आखिरकार साधना को फिर उनकी पहली फिल्म मिली। कहा जाता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स ने साधना को एक प्ले में देखा था। उन्हें साधना की एक्टिंग अच्छी लगी और उन्होंने साधना को फिल्म में लेने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद साधना को फिल्म पसंद

आई तो मेकर्स ने उन्हें 1 रुपया का सिक्का उनके हाथ में रख दिया और यही थी साधना की पहली फिल्म की फीस। ये भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना थी, जी हाँ, जिसे 1958 में रिलीज किया गया। अब भले ही साधना पहले फिल्म कर चुकी थी, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली थी। एक दिन साधना की एक तस्वीर को शशिधर मुखर्जी ने देखा, उन्हें साधना काफी अच्छी लगी, तो उन्होंने साधना का पता लगाया और फिर बेटे जॉय मुखर्जी से कहा कि साधना के साथ वो काम करें। आखिरकार साधना को फिल्म लव इन शिमला से बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया गया। इस फिल्म को डायरेक्टर आर के नैयर ने जी हाँ डायरेक्टर आर के नैयर ने डायरेक्ट किया था, जिनसे साधना ने शादी भी की। इसके बाद साधना की किस्मत बॉलीवुड में चल पड़ी और वो बैक टू बैक फिल्मों में काम करती गई। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की फिल्म का अगला गीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गीत परख फिल्म से। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि जी हाँ, साधना की हिट फिल्में है लव इन शिमला, परख, हम दोनों, प्रेम पत्र, एक फूल दो माली, मेरा साया, वो कौन थी, आरजू, वक्त, मेरे महबूब और भी कई सारी। तो चलिए इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं जी हाँ उनका बेहद ही लोकप्रिय सदाबहार गाना।

तो मित्रों आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की बेहद ही खूबसूरत मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदसानी की। जी हाँ दोस्तों, साधना 30 सालों तक आरके नैयर के साथ रही, यानी कि अपने पति के साथ रही, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 1995 में आरके नैयर ने इस दुनिया को छोड़कर चले गए और साधना बिल्कुल अकेली रह गई। अकेली इसलिए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने पति आर के नैयर की मौत के बाद 20 सालों तक साधना बिल्कुल अकेली रही। वो कहती थी जिस लड़की के साथ उसका पति ना हो, भाई ना हो और जी हाँ पिता ना हो, तो दुनिया उसे बहुत ही खूनखार नजरों से देखती है, बहुत सताती है, बहुत रुलाती है और बहुत तड़पाती है। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। आखिरी दिनों में साधना बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और बहुत परेशान रहने लगी थी। परेशानी की वजह ही थी कि जिस घर में वो रहती थी उस घर पर मुकदमा चल रहा था। रोज रोज पुलिस के और अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे और वो भी बीमारी की हालत में। साधना की जिंदगी में उनके पति आरके नैयर उनके सपनों के राजकुमार बनकर आए थे, आए भी और चले भी गए। सुंदर सपना टूट गया और साधना बिल्कुल जी हां टूट गई। फिल्मों में संन्यास के बाद साधना जी फिल्मों की तरफ नहीं लौटी, हालांकि इनकी इच्छा बतौर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्मों से जुड़ने की भी थी। आपको बता दें कि इनको कोई अवार्ड भी नहीं दिया गया, लेकिन जी हां साल 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यकीनन साधना जी का अभिनय, इनकी मुस्कुराहट, इनके जज्बाती सीन, इनका डांस, सब कुछ शानदार रहा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में साधना जी जैसी ना कोई थी और ना होगी। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं उनके फिल्म का दूसरा गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे रवि शंकर शर्मा की आवाज में एक फूल दो माली फिल्म से। आपको बता दें कि 25 दिसंबर साल 2015 में साधना ये दुनिया छोड़कर चली गए और फिल्म गुलशन का एक महकता हुआ फूल, खिलखिलाता हुआ फूल मुरझा गया, लेकिन वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। तो श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि साधना शिव दसानी पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक अब यहीं पर

संपन्न होता है। जी हाँ, इसी के साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशेष श्रोताओं का समाचार। तो आप जुड़े रहें अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोता मित्रों, आज किसी कारणवश आप निशी श्रोताओं का समाचार नहीं सुन पाए। आपको बता दें कि निशी श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे आप सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। श्रोत मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:09 हो रहे हैं। तो चले से के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का। आपको बता दें कि आप सुन रहे थे बरसात फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। श्रोता मित्रों, जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। जीवन की सीख एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अनुभवों, असफलताओं और सफलताओं से प्राप्त ज्ञान और समझ को भी शामिल करती है। ये सीख हमें बेहतर निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। ये हमें व्यक्तिगत विकास और आत्मा जागरूकता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। तो चलिए इस विचार के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला बेहद प्यारा गीत।

0: लेकिन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये बेहद ही खूबसूरत गीत का आप आनंद ले रहे थे। जी हाँ श्रोता मित्रों, जीवन की सीख अक्सर हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने के प्रयासों से जुड़ी होती है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं या किसी परियोजना पर काम करते हैं, तो हम लगातार सीखते रहते हैं। ये सीखना केवल तकनीकी ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें समय प्रबंधन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे कौशल भी शामिल होते हैं। हर अनुभव, चाहे वो सफल हो या असफल, हमें आगे बढ़ने के लिए मूल्यवान सबक सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहें अरुण FM 103.1 MHz पर। फिलहाल हम ले रहे हैं एक अंतराल।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट illegal earth-cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
3: Dil se dil tak baat pahunchi. मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे गीत फिल्म के सदाबहार गीतों का। जी हाँ, इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में, जी हाँ, 8 बजते ही आप सुन पाएंगे अरुणाचल प्रदेश के संगीत से सजा कार्यक्रम अपना गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जिसमें लेकर आई हूँ आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत। और अपना गीत कार्यक्रम के सफर में मैं हूँ आपके साथ गैर अतः। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपना गीत कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं अपनी मिट्टी की खुशबू, मतलब अपना अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत। जिस तरह अपने घर और गांव से दूर अनजान जगहों पर अपनी तरह कोई दिख जाए हमें, कोई अपनी भाषा में बोले या कोई पहनावा अपना सा दिख जाए, तो जाने अनजाने उस अनजान इंसान से अपना सा रिश्ता जुड़ जाता है। और उसी तरह बॉलीवुड, हॉलीवुड, रैपिंग, पॉपिंग और बीट बॉक्सिंग के इस जमाने में कहीं हम अपना रंग न भूल जाए, इसलिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज आपको अपनों से जोड़ते हैं अपने राज्य के गीतों के जरिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गायक के गीत से जो है तो गालो समुदाय से, पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग भाषा में कई गीत गाए हैं और हम सबके लोकप्रिय भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री मोगे दोजी के। तो चलिए श्रोताओ, मोगे दोजी की अच्छी सेहत की कामना के साथ कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मोगे दोजी द्वारा गाया ये गालो गीत।

अपना गीत कार्यक्रम में पेश है एक रोमांटिक गीत जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने प्यार की गहराई को बताते हैं। ये अपतनी गीत है और आवाज है हागी कोमो की।

दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि कहीं इस चकाचौंध दुनिया में हम अपना रंग न खो दे, और हमारा अगला गीत इसी भाव से भरे है।

जिसमें समाज को अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान को बचाने की और उनकी अहमियत को पहचानने की गुहार लगा रहे हैं। और ये गीत है निशी भाषा में, जिसे गाया है अरुणाचल प्रदेश के लेजेंडरी सिंगर्स में से एक और आकाशवाणी ईटानगर में कार्यक्रम निष्पादक के रूप में कार्यरत जेम्स बिजनू नाबाम के। तो चलिए आनंद लेते हैं इस निशी गीत को।

हमारी संस्कृति हमारी पहचान। जी हाँ श्रोताओ, हम यही कहते हैं और मानते भी हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गीत स्वर्गीय विनायक तैसिम की आवाज में। ये तांगसा गीत है जिसमें गायक ने हमसे और आपसे यह आग्रह कर रहे हैं कि हम उनके शब्दों को या संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को बताते जाए। आने वाली पीढ़ी के दिमाग में अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति एक प्रेम पैदा करें। उनके दिमाग में अलग अलग रूप से संस्कृति और परंपरा को संजोकर रखने का भार हमें सौंप रहे हैं।

तो दोस्तों वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के समापन का। उम्मीद करती हूँ हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे। श्रोताओ आप अपना गीत कार्यक्रम सुन सकते हैं थर्सडे से सैटरडे रात 8 बजे यानी गुरुवार से शनिवार रात 8 बजे अरुण FM 103.1 MHz पर। तो लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत तागिन भाषा में।

श्रोता मित्र, अभी आप आनंद ले रहे थे अरुणाचल प्रदेश की विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत का। जी हाँ, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हमारे इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:30 होने ही वाले हैं। और जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आगे आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम युवा वाणी। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आज का हमारा विषय है ह्यूमन इमोशंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम युवा वाणी।

0: आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपके साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक सवाल है आप सबसे। अगर मैं कहूं कि एक मशीन आपकी आवाज पहचान सकती है, आपकी पसंद समझ सकती है और आपसे तेज सोच भी सकती है, तो आप क्या कहेंगे? वाओ, फ्यूचर इज हियर, राइट? लेकिन अगर वही मशीन आपसे पूछे, आज तुम उदास क्यों हो, और आपकी आंखों की नमी समझ ले, क्या वह सच में मुमकिन है? यही से शुरू होती है दो ताकतों की कहानी, AI और EI। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो दिमाग जो कभी थकता ही नहीं, जो सेकंड्स में लाखों फैसले कर सकता है और जो आज की युवाओं को बना रहा है कोडर, क्रिएटर और फ्यूचर लीडर। लेकिन EI इमोशनल इंटेलिजेंस यानी वो समझ जो शब्दों से पहले भावनाएं पढ़ ले, जो गुस्से में भी सही फैसला करना सिखाए और जो हमें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं इंसान बनाती है। दोस्तों, AI हमें सिखाता है क्या करना है, लेकिन EI हमें सिखाता है कैसे और क्यों करना है। आज का युवा अगर AI सीख रहा है तो उसे EI भी सीखनी होगी, क्योंकि भविष्य सिर्फ स्मार्ट लोगों का नहीं होगा, भविष्य होगा समझदार और संवेदनशील लोगों का। तो आज का सवाल यही है, क्या AI दिल जीत सकता है और क्या EI बिना टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ सकती है? इसी दिलचस्प जंग पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रेडियो स्टूडियो पर प्रीतम ज्योति शर्मा, जो हमें बताएंगे कि इस AI के दौर में EI क्यों हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये बातचीत आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस, दिमाग बनाम दिल।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। डियर लिसनर्स, टुडे वी स्टैंड एट ए फैसिनेटिंग पॉइंट इन हिस्ट्री, ए टाइम वेयर मशीन्स आर गेटिंग स्मार्टर एवरी डे एंड येट द रियल क्वेश्चन इज आर वी गेटिंग वाइजर। थिंक अबाउट द सिचुएशन लाइक We reply faster but understand slower. We communicate more but connect less. We have information but no clarity. We have networks but not relationships. As technology becomes smarter, something unexpected is happening. People are becoming more overwhelmed, more stressed, more reactive and less connected. Why? Because while AI is growing, our emotional intelligence is shrinking. Now, what is AI and what means EI or emotional intelligence? AI, I mean artificial intelligence, is the ability of machines or computer to think, learn and make decisions like humans. In short, artificial intelligence is equal to data plus algorithms plus learning plus decision making. Or even in shorter, we can say AI is equal to information plus logic plus experience. On the other hand, emotional intelligence means the ability to understand your own emotions, manage them wisely, and recognize and respect the emotions of others. So, emotional intelligence, we can say, it is about self-awareness, self-control, empathy, healthy relationships. So, in a short term, we can say EI is equal to understanding emotions plus managing emotions plus connecting with others. In case of emotional intelligence, different concepts and models or frameworks are existing. Technology has made everything quick except emotional healing, and this is exactly why EI matters more than ever. AI can process data, but only human can process feelings. AI has become a part of our daily life, from recommending music to writing emails, from guiding us through maps to predicting our choices or weather. But in this race of developing machines, are we forgetting to develop deeper humans? AI is fast, efficient, tireless. But emotional intelligence, I mean EI, is something only we possess. It is the heart's ability to understand, connect, empathize, and respond with awareness. And today, we are going to explore why the balance between these two is becoming the biggest challenge of our generation. Let's start with a simple example. AI can recognize your face, but EI can recognize your pain. AI can translate languages, but EI can translate silence. AI can answer questions, whereas EI can answer emotions. This difference is not small. It is life-changing. In workplaces,

कुछ अल्फाज कम पड़ जाते हैं हाले दिल सुनाने में, कि खो गए हैं हम फिर से उस सुहाने जमाने में। तलाश खत्म हुई जब धड़कनों ने चुपके से ये माना, कि तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना।

आज दिल के एक ऐसे कोने की बात करते हैं जो हम सबके पास है, पर हम अक्सर उस बारे में बात नहीं करते। उस पहले एहसास की जो प्यार से ज्यादा एक इबादत जैसा था, वो दौर जब किसी की सिर्फ एक झलक देख लेना ही पूरे दिन की खुशी बन जाती थी। उस एहसास में कोई शोर नहीं था, बस एक मासूम सी चुप्पी थी, एक ऐसी सादगी जिसे याद करके आज भी हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, चाहे हम हो या हमारे पारे। वो एक एहसास था जो दिल को बिना छुए भी धड़का देता था। और जब बात ऐसी नजाकत और मासूमियत की आती है तो जहन में सिर्फ एक नाम गूंजता है, श्रेया घोषाल। श्रेया मैम की आवाज में वो शहद जैसी मिठास है और वो रूहानी सुकून है जो आज के शोर शराबे में कहीं नहीं मिलता। उनकी गायकी सिर्फ सुरों का संगम नहीं बल्कि सीधे दिल से निकलने वाली एक दुआ है। तो चलिए श्रेया मैम की इस मली आवाज के साथ उस सुहाने दौर की यादों में फिर से खो जाते हैं। सुनिए ये खूबसूरत गाना।

0: श्रोतागण, अभी आप सुन रहे थे कुछ 90s के गाने और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा विदा लेती हूँ ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे ठीक इसी समय बुधवार को। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 9 बज रहे हैं और इसके साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले

दूसरे गीत में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्र लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत गीता दत्त की आवाज में लव मैरिज फिल्म से। इस गीत को संगीत से सजाया है जय किशन ने और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने। गीत के बोल हैं, करीब आओ न तड़पाओ, हमें कहना है कुछ तुमसे तुम्हारे कानों में। तो इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में दिल दिया दर्द लिया फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप ले आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। श्रोता मित्र, चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का यानी कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म का एक और गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म के गाने। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के आखिरी मोड़ पर आप पहुंचे हैं और इसके साथ ही आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म का, यानी कि ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म का एक और गीत। जी हाँ, और कार्यक्रम का ये आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म के गीत का। इस गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर आ पहुंचे हैं और साथ ही आप सभी से अलविदा कहने का वक्त भी हो चला है। श्रोता मित्र, इस तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आगे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम कॉल के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और हम फिर आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे कल प्रातः 5:48 पर, यानी हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तो अब अपनी रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति, आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: Çerçaka bir şey.
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 300,000 बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको

0: स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सोकॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की। उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास इसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
0: देखिये, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली. मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो. मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए. इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है. मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया. फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था. पर यह है कि अभी भी इस समस्या का एक कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा. कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है. मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है. इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा, उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है. अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे. पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए. और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी. और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते. ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा. तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा. और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए. और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा. तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो. तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी. पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में.
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है.
4: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी. मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं.
1: जी,
4: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था. IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था. IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था. जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है. और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया. शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया. अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं. मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है. ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है, तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
6: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
4: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसकी समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक, मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसीज की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिकोर, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े, इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा

0: संगठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
1: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको रिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की। एक रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी, इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
0: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
5: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम

0: करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान रखने की अपील की है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 244 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। जवाब में हैदराबाद की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ताबड़तोड़ 97 रन की पारी खेली। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
0: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
5: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल. थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी.
0: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
4: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Normal life has been severely affected due to the intense heat wave sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganganagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today. The Indian Meteorological Department, IMD, has said severe heat wave conditions are expected to continue over central and northwest India during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh and Vidarbha tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh tomorrow. Meanwhile, the IMD has predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry tomorrow. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision, SIR, of the electoral rolls being conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. It observed that SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The top court pronounced the judgment in the writ petitions, which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The Assam Legislative Assembly today passed the Uniform Civil Code Bill, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such legislation after Uttarakhand and Gujarat. The bill was introduced in the first session of the 16th Assam Legislative Assembly on Monday. It was passed by the House on the concluding day of the session today. Union Home Minister Amit Shah has congratulated the people of Assam for the passage of the Uniform Civil Code in the State Assembly. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid al-Zuha. In her message, the president said the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. President Murmu said the festival also inspires citizens to serve humanity, particularly those who are less privileged. She further urged the citizens to strengthen the resolve to promote love and harmony in the society. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार. मुख्य समाचार. भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दोबारा पुष्टि की. अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाया. उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया. दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में करीब 31 लोगों की मौत. जापान की संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना जुटाने को केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दी और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
6: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: इसके बाद दोनों देशों के मंत्रियों की सह अध्यक्षता में कनाडा भारत निवेश गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पेंशन फंड और बैंकों सहित कनाडा के प्रमुख वित्तीय निवेशकों के साथ साथ दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने हितधारकों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के सतत विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय बाजारों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कनाडा में भारतीय समुदाय की शक्ति और भारत कनाडा व्यापार गलियारे को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में अमरीका का एक दल अगले महीने की पहली से चौथी तारीख तक भारत का दौरा करेगा। इस दौरे का उद्देश्य व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपायों और अन्य कई क्षेत्रों पर चल रही वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति व्यक्त की थी। ये ढांचा व्यापक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारतीय पक्ष ने पिछले महीने की 20 से 23 तारीख तक वाशिंगटन का दौरा किया था, जहां उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बैठकें की थी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इंकार करने पर रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में इस्लामाबाद की भूमिका बेहद समस्याग्रस्त है। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध और उनकी निष्पक्षता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है। सीनेटर ने दावा किया कि ये निर्विवाद है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर रखे जा रहे हैं। उन्होंने इसराइल के खिलाफ शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों की पिछली टिप्पणियों को भी चिंताजनक बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह दी है और उनका समर्थन किया है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम भुगतने होंगे।
7: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
8: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindu को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते सीमावर्ती तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाली इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। ये हमले 16 अप्रैल को अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष रोकने के लिए कराए गए युद्ध विराम समझौते के बाद हुए हैं। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे जटिल सुरक्षा वातावरण के जवाब में खुफिया और जासूसी विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है। हालांकि नए कानून में संसद द्वारा खुफिया गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून जन अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। परिषद की अध्यक्षता सनाए तकाइची करेंगी और इसमें 9 अन्य कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। नए कानून के तहत जापान के खुफिया तंत्र को केंद्रीकृत किया जाएगा। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि ये घटनाएं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्योहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। नेपाल ने विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को ऑनलाइन कॉन्सुलर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोफा मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस ऐप के जरिए नेपाली नागरिक और उनके परिवार कॉन्सुलर संबंधी शिकायतें और समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। म्यूनिक में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
9: And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
1: फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जियन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 38 हिट के साथ डोरीन वेनेकैंप दूसरे और 31 के साथ मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने मैच पर ध्यान दिया। मैच के बाद ईशा ने कहा कि उन्होंने लगातार अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दोबारा पुष्टि की। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। जापान की संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना जुटाने को केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. At least 31 people killed in Israeli air raids across southern Lebanon. Japanese parliament approves law to set up National Intelligence Council to centralize information gathering in response to overseas threats. And Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And now the news in detail. India and Canada have reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the SEPA negotiations by the end of the year. This was followed by the Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu in Toronto. Both leaders discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaboration. The Commerce and Industry Ministry said, Mr. Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during his visit to Canada. The meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the U.S. and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said the comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to U.S. President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's Defense Minister Khwaja Mohammad Asif rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with the TV channel. India's permanent representative to the UN, Parvathaneni Harish, has strongly criticized Pakistan at the UN Security Council, accusing Islamabad of continuing cross-border terrorism and warning that it would face consequences for sponsoring terror activities against India. Harish made the remarks during the UN Security Council open debate on upholding the purposes and principles of the UN Charter and strengthening the UN-centered international system. Addressing the council, the Indian envoy said, Pakistan had consistently harbored and supported terrorism, violent extremism and anti-India activities since its creation, and Pakistan will have to accept that there are consequences to its sponsorship of cross-border terrorism.
8: Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. Cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by a thousand cuts exposes its hollow rhetoric. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
4: Several leading human rights organizations and student bodies today strongly condemned the escalating wave of enforced disappearances of Baloch civilians, including women, across Pakistan, allegedly carried out by Pakistani security forces. A report.
10: Human rights organizations said that for many affected families, Eid has turned into a period of grief, uncertainty and painful separation from their loved ones. According to the Baloch Students' Council of Pakistan's Punjab province, multiple students affiliated with the organization's Punjab and Islamabad chapters have been forcefully disappeared. Meanwhile, another Baloch woman, Habiba Pirjan, a resident of the Nazarabad Tump region in Balochistan, who is currently based in Karachi, was forcefully disappeared by Pakistani security forces on 25th of May, following a raid at her residence in Baldia town. According to the Baloch Women Forum, the repeated targeting of Baloch women through enforced disappearances highlights a deeply troubling system of repression and collective punishment. Condemning the incident, PANC, the Baloch National Movement's Human Rights Department, demanded the immediate and safe release of Habiba, while calling on the Pakistani authorities to end the ongoing practice of enforced disappearances and harassment of families in Balochistan and Karachi. Swati Rakhija for World News.
4: This is Akashvani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Welcome back. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. Lebanese health officials said the deadliest strike hit the Burj Al Chamli area near the southern city of Tayr, where 14 people lost their lives and 16 others were wounded. In Qawsariya al-Sayyad, 5 people were killed and 6 injured. 4 persons died and 10 others were hurt in Habush. 6 people were killed in Maraka, while 2 others lost their lives in Salah. There has been no immediate official response from the Israeli military on the individual strikes. However, Israel has consistently maintained that its operations in southern Lebanon are aimed at Hezbollah positions and infrastructure. Meanwhile, Hezbollah has continued launching attacks into northern Israel, heightening fears of a wider regional conflict. Israel has announced that Hamas military commander Mohammed Odeh was killed in a targeted overnight strike in Gaza City. Israeli Defense Minister Israel Katz described the operation as a major blow to the militant group's military structure. Israel officials add that Odeh had only recently assumed charge as head of Hamas's military wing following the killing of Izzaldin al-Haddad earlier this month. Japanese parliament today approved a law to set up a National Intelligence Council to centralize information gathering in response to overseas threats. Establishing the council is one of the key aims of Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's governing agenda. She has vowed to strengthen intelligence and counter-espionage capabilities as part of a response to what her government terms the most complex security environment since the end of the Second World War. Ms. Takaichi has said that a system must be created for registering foreign government actors engaged in lobbying activities and stressed that Japan must establish its own external intelligence agency. India's Isha Singh broke the world record in the women's 25-meter pistol shooting event at the ISSF World Cup in Munich today. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the finals to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. Isha maintained the edge through the final to seal the title and the record. German shooter Doreen Venekamp finished second with 38 points, while former world champion Miroslava Mincheva of Bulgaria claimed third place with 31 points. Talking to media, Isha Singh shared her feelings.
11: Munich meant a lot to me. I think everyone in this sport knows the kind of competition that goes on here. At least in pistol, it's very, very tough. And I badly wanted to win this one because it's my third time here. And last time I didn't even make it to the final, though it was the same score for the top eight. I'm very grateful. I loved the experience. I didn't really expect this good shooting to happen, but I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training.
4: In IPL cricket, Rajasthan Royals have set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh tonight. In reply, Sunrisers Hyderabad were 114 for 5 in 9 overs when reports last came in. The Indian cities of Chandigarh and Bhubaneswar were today awarded hosting rights of next year's Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships by the continent's athletics governing body during its Executive Council meeting in Hong Kong. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. India-Canada reaffirm shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion US by 2030. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. At least 31 people killed in Israeli air raids across southern Lebanon. Japanese parliament approves law to set up National Intelligence Council to centralize information gathering in response to overseas threats. An Indian shooter, Isha Singh, breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That concludes tonight's World News. For more updates, stay tuned to Akashvani. Good night.